दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
6: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज हैं और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा

0: कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमरीका इस पर सहमत हो गया है। अमरीका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ा

0: धर्मेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहरीन खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:45 और 18 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में शामिल है भेंटवार्ता, सोरियोसिस और लाइकन प्लैनस, साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी और साथ ही जानेंगे आई फ्लू के बारे में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं भेंटवार्ता सोरियोसिस और लाइकन प्लैनस। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चित्रा वासु, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आपसे बात कर रही हैं राजलक्ष्मी। डॉक्टर चित्रा वासु आज हमारे साथ उपस्थित हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। आप एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि त्वचा से संबंधित रोगों के बारे में आप कुछ बताएं कि कौन कौन से रोग त्वचा से संबंधित हैं।
2: त्वचा हमारी शरीर की, आपने बोला सही बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की। जो भी है हमारी मन या शरीर को पसंद नहीं है, वो तुरंत पहले स्किन में ही रिएक्शन आएंगे। पहले माइंड के बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते, बट बेसिकली ऐसी होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हमारी ओपीडी में जो जो आता है इम्पॉर्टेंट कॉमन बीमारियां, मैं बोलती हूँ, एक तो आता है एक्जिमा इन अक्यूट या क्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसके अंदर ही आता है अलग अलग एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ग्रेविटेशनल एक्जिमा एक्सेट्रा, सो एंड सो। एंड देन अनदर कैटेगरी आता है पैपिलोस्क्वैमस डिसऑर्डर, उसमें आता है सोरियासिस, लाइकन प्लैनस जैसे बीमारियां। फिर इन्फेक्शियस डिसीज होता है जैसे टीनिया इन्फेक्शन या रिंगवो, अदर फंगल इन्फेक्शन भी होता है।
1: जी, तो जैसा कि आपने कहा, आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो मुख्यतः सोरियासिस और लाइकन प्लैनस के बारे में रहेगा। डॉक्टर साहब, सोरियासिस और लाइकन प्लैनस ये कौन सी बीमारी है, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए।
2: ये दोनों एक पर्टिकुलर कैटेगरी है पैपिलोस्क्वैमस डिसऑर्डर्स, उसमें आता है सोरियासिस और लाइकन प्लैनस। सोरियासिस कंपेयर टू लाइकन प्लैनस, सोरियासिस की इंसिडेंस ज्यादा है हमारी ओपीडी में। सो सोरियासिस में क्या होता है, अपनी स्किन में उभरी हुई लीशन आता है लाल रंग की, उसमें खुजली भी होता है, वही है। एंड लाइकन प्लैनस के बारे में बात करने तो वो है ना, थोड़ी फ्लैट लेशन है और थोड़ा वायलेट कलर या पर्पल या बैगनी रंग की वही होता है, उसमें भी खुजली होता है। सो दोनों में ये है, वो पपड़ी निकलता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल दिया पैप्यूल और स्केल, ये दोनों होता है।
1: तो जैसा कि हम समझ पाए, इसका मतलब यह है कि सोरियासिस और लाइकन प्लैनस, इन दोनों में कोई लिंक है, या अगर कोई अंतर है तो उसके बारे में हमें बताएं।
2: हाँ, क्योंकि इसलिए मैं पहले बोल दिया दोनों पर्टिकुलर, क्योंकि उनकी पैथोलॉजी के अनुसार हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब पैथोलॉजी दोनों की एक तरीके से सेम है, इसलिए पैपिलोस्क्वैमस के अंडर क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि दोनों में पैप्यूल और स्केलिंग होता है। सो बेसिकली वही है, और इन दोनों की इटियोलॉजी भी पता नहीं है, और उसमें ये हमारी इम्यून स्टेटस जब एक इम्बैलेंस होने वक्त ये आता है, इसलिए दोनों में ये बोलता है जब कोई भी नॉर्मल सेल्स को अटैक करता है, हमारी बॉडी की सेल्स नॉर्मल सेल्स को अटैक करता है, एंड एज अ रिजल्ट दोनों में क्या होता है, सेल ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाता है और हमारी स्किन की टर्नओवर पीरियड नॉर्मली 40-56 होता है, वो रिड्यूस होकर 4-7 तक आता है। सो इसलिए इतनी ये ओल्ड स्किन ऊपर आने वाला वो टाइम है ना, बहुत कम हो जाता है। सो बिल्कुल इतनी पपड़ी निकलते है। सो बेसिकली वही, ये दोनों में ये मैकेनिज्म होता है।
1: तो जी, आपने इसके कारण बताए, इसका मतलब मैं ये समझूं कि सोरियासिस जिसको भी होगा, जिस भी मरीज को होगा, क्या लाइकन प्लैनस होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: बिल्कुल, ऐसी नहीं,

0: किसी ने चांसेस नहीं देखा आज तक, क्योंकि अलग अलग बीमारी है ना, अलग अलग है।
1: और इनके बीच में कोई विशेष अंतर आप बताना चाहेंगी?
0: रंग की हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सोरियासिस बिल्कुल मैंने बोला वो पैप्यूल उभरी हुई लीशन है और उसमें खुजली होता है लाल रंग की और उसमें ब्लीडिंग पॉइंट्स होता है। अगर वेन्यू अब केस अटेंड करने वक्त है ना, आप पूछने वक्त पेशेंट खुजली खुजली कर उसमें ब्लीडिंग पॉइंट्स होता है, बट लाइकेन प्लैनस में ये नहीं होता, वो थोड़ी वायलेट कलर पर्पल कलर की लीशन होता है, उसमें ऐसी नहीं होता और अपियरेंस से हमें पता चल जाता है, वेन्यू अटेंड द केस हमें पता चल जाता है।
1: तो शरीर के किन किन अंगों को ये प्रभावित करते हैं और क्या ये किसी इंटरनल ऑर्गेन को भी प्रभावित कर सकते हैं?
0: पहले मैं शरीर की किन किन अंगों के बारे में बात करती हूँ। सोरियासिस यूजुअली अपने स्कैल्प में आ सकते हैं और अपनी ट्रंक बैक साइड और अपनी एक्सट्रीमिटीज अपना लिम्स पर भी आ सकते हैं और लाइकेन प्लैनस भी ऐसी है, वो अपनी यूजुअली लिम्स में आता है एंड ओरल मुंह के अंदर भी आ सकते हैं और अपनी जेनाइटल ऑर्गन्स में भी इसका अफेक्शन है, एक्चुअली प्रेडिलेक्शन है।
1: तो मैम हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित हैं, स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें या एल्डरली की बात करें, तो ये रोग त्वचा रोग जो है किसको ज्यादा प्रभावित करता है या कौन लोग ज्यादा प्रोन है इससे?
0: इसकी मैं स्पेसिफिकली आंसर बोलना चाहती हूँ एज पर द लिटरेचर, क्योंकि सोरियासिस एक जेनेटिक प्रेडिलेक्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कहने की मतलब है ये अगर एक पेरेंट को है तो चांसेस है बच्चे को आने की, और ऐसा कोई जेंडर प्रेडिलेक्शन नहीं है, मेल को ज्यादा फीमेल को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ही पर्सन की अर्ली लाइफ और लेटर लाइफ में भी सोरियासिस की एक्सेसरबेशन होता है। अगर लाइकेन प्लैनस की बात करते तो ऐसी कोई ऑफकोर्स उसमें भी है जेनेटिक वही है, मगर फीमेल्स आर मोर प्रोन टू द लेशन। ऐसा कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं है इन द लिटरेचर, बेसिकली वो ये। एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, सोरियासिस की कॉम्प्लिकेशन है सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ये लाइकेन प्लैनस की जो कॉसेज है ना उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इनकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से अभी है, मतलब प्रोडोमिनेंट अभी वी कैन सी इट, वी कैन देर इज एन एसोसिएशन विद हेपेटाइटिस सी, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। और मैंने लाइकेन प्लैनस की एक सिचुएशन बोला ओरल मतलब मुंह में, उसमें क्या होता है कभी कभी जो ओरल या डेंटल फिलिंग होता है ना उसकी मेटल की वजह से एलर्जी की, उसी वो वाला केसेस में भी एसोसिएशन मिल सकते हैं हमें लाइकेन प्लैनस की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन सोरियासिस की बेसिकली इतनी एक्सटेंसिव स्किन लेशन होने वक्त क्या होगा, हमारी जो पूरा जनरलाइज्ड सोरियासिस भी हो सकते हैं पूरा बॉडी में, सो क्या होगा ये पूरा प्लेक्स है ना अपने अपने आप से मर्ज होकर एक एरिथ्रोडर्मा जैसे सिचुएशन, उसमें बहुत प्रोटीन लॉस हो सकता है, दैट इज लिटिल बिट डेंजरस। एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड हो सकता है सोरियासिस में, फिर सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी अपनी जॉइंट्स में भी अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल। एंड अनदर थिंग दैट खुजली की वजह से ना पेशेंट को नींद प्रॉपरली नहीं मिल सकते, सो वो भी एक स्लीप डिस्टर्बेंस ऐसे हो सकता है। एंड इवेंचुअली अपनी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से थोड़ी सी डिप्रेसिव फेज में भी चल सकते, सो यू हैव टू गिव, मतलब वी डॉक्टर्स हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ दैट सपोर्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज देख लिया, दे आर वेरी डिप्रेसिव है ना, वो अपनी कॉन्फिडेंस भी कम है ओविंग टू दिस ऑब्वियसली ये अपियरेंस की वजह से बेसिकली। एंड देयर इज एन एसोसिएशन विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑल्सो हो सकता है एंड हाइपरटेंशन का भी एसोसिएशन है सोरियासिस में। लाइकेन प्लैनस का ऐसी एक्चुअली वो सेल्फ रिसोल्यूशन है, अपने आप से ठीक हो जाता है, दो तीन महीने आकर अपने सोरियासिस की तरह नहीं है। अगर ज्यादा सिम्टम्स है तो खुजली पसिस कर दिया तो यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन।
1: इसका होम्योपैथिक चिकित्सा में क्या इलाज है मेडिकल साइंस में?
0: डेफिनेटली होम्योपैथी स्किन डिसीजेस के लिए सबको मालूम है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और बिल्कुल अपनी ओपीडी में आने वक्त है ना हम इंडिविजुअली केसेस अटेंड कर हम प्रिस्क्राइब करता है अपनी सिम्टम्स के अनुसार, जो पेशेंट्स के सिम्टम जो मेरे सामने आता है, नेचर ऑफ द पस्ट्यूल्स या नेचर ऑफ द प्लेक या बाकी पेशेंट की बाकी भी सिचुएशंस देखकर है ना वी प्रिस्क्राइब एंड रिजल्ट हो जाता है। आई एम टेकिंग द थियरी, वन ऑफ द थियरीज बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, सबको मालूम है फ्रॉयड।

0: साइकोलॉजिकल थियरीज के बारे में. सो उन्होंने एक थियोरी फॉर्मुलेट कर दिया, थियोरी ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ नंबर ऑफ डिजायर्स एंड सब डिजायर्स है ना फुलफिल नहीं होता है, हमको पता है. सो हम क्या करता है, हम सारा हमारी ये डिजायर्स को सप्रेस करता है इन ऑर्डर टू लिव नॉर्मली. बट कुछ कुछ सिचुएशंस होता है उसी टाइम अगेन दोबारा ये जो डिसेयर्स है ना आगे आएगा, अगेन हम सप्रेस करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेशन एंड सप्रेशन. सो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व कर दिया ये जो ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन या बहुत चीज अपनी पेनफुल सिचुएशन अपनी ट्रॉमा अगर प्रॉपरली हील नहीं किया तो ना ये बिल्कुल स्किन कंडीशन के रूप में आते हैं. सो वो लॉन्जिट्यूडनल केस स्टडी लेने वक्त हमें तो ये पकड़ना है द ट्रू एसेंस ऑफ ए ह्यूमन बींग. सो वो ट्रू एसेंस अगर पकड़ लिया तो फॉर मी इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैं पेशेंट्स को कैटेगराइज करती हूँ वेदर द पेशेंट इज ओवर प्रैक्टिकल या ओवर सेंसिटिव या ओवर इंटेलिजेंट और ओवर कॉन्फिडेंट. क्योंकि एक बैलेंस, ये चारों चीज पर एक बैलेंस होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो आप सोचिए, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है बट ओवर प्रैक्टिकल कैसी होगा, और ओवर सेंसिटिव है तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा. सो दिस डिफरेंस, एंड मैं अपनी मेडिसिन्स को ऐसी कैटेगराइज कर रखी हुई है एंड आई प्रिस्क्राइब इन दैट वे एंड दैट इज ऑफरिंग क्योर टू माई पेशेंट्स.
1: जी आखिरी में डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है, तो इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को त्वचा संबंधित रोगों से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, क्योंकि अभी बारिश की मौसम है, सबको मालूम है, सबको पसंद भी है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, उनका भी बहुत फेवरेट मौसम है, इसलिए हमको तो फाइट करना पड़ेगा उनके खिलाफ, है ना. सो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस है, स्कैबिस, इंडोट्रिगो या टीनिया इन्फेक्शन और एक्सिमा ऑल्सो, क्योंकि डैमनेस बहुत ज्यादा है ना, और ये सब पर्टिकुलर डिजीज इसमें ये बारिश वाला मौसम में बहुत अधिकतर देखने को मिलता है. एंड स्कैबिस थोड़ा हम ध्यान से देखना है, क्योंकि बिल्कुल वो कंटेजियस डिजीज है, फैमिली के सब मेंबर्स को स्प्रेड हो सकता है. सो लिटिल बिट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. एंड वो ये, एंड इसको प्रिकॉशंस के बारे में अगर बात करना चाहते हो ना, यू हैव टू अवॉइड स्ट्रीट फूड फर्स्टली, और अपने आप को हाइड्रेट करना, वार्म ड्रिंक से हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डैमनेस अवॉइड करना है, ऑलवेज कैरी योर अम्ब्रेला, क्योंकि एक्सिमा समटाइम्स यू नो रेन एक्सपोजर से भी अगर सेंसिटिव है तो यू कैन डेवलप अर्टिकेरिया एंड ऑल. सो ये सब आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली, ये सब प्रिकॉशंस कर सकते हैं.
1: डॉक्टर चित्रा वासु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: सिरोसिस और लाइकन प्लैनस, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर चित्रा वासु से. आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में. आपसे बात कर रही थी राजलक्ष्मी. कार्यक्रम में आगे सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी. जानकारी दे रही हैं श्रृंगारिका उपाध्याय.
3: किसी भी देश की ताकत उसकी जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर उसके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब चीजें अनकंट्रोल हो जाए तो वो नुकसानदायक भी हो जाती है. वैसे ही अधिक जनसंख्या किसी भी देश के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. ये दिन जनसंख्या के मुद्दों के महत्व पर गौर करने के लिए समर्पित है. इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था, जब वैश्विक जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था. इस दिन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है. इस दिन विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि लोगों को इन विषयों के बारे में जागरूक किया जा सके. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गर्भावस्था या प्रसव के कारण हर 2 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है. इससे संघर्ष की स्थिति में मौतों की संख्या दोगुनी हो जाती है. तेजी से बढ़ती आबादी दुनिया भर में पर्यावरण के लिए कई बड़े खतरे पैदा कर रही है. साथ ही ये लोगों की आय में कमी, भूखमरी की स्थिति और पर्यावरण से जुड़े बदलाव का कारण बन रही है. इसके कारण कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है, जिससे खदान उत्पाद भी प्रभावित होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है और वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरूप नहीं है। इससे आने वाले दिनों के लिए कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन जैसे समाधान मौजूद है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा रहा। दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब जनसंख्या दिवस के प्रति जागरूक हो और लोगों में जागरूकता फैलाएं। इस बात का संदेश पूरे समाज में दे कि छोटा परिवार सुखी परिवार।
2: अभी आप श्रृंगारिका उपाध्याय से सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी। कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है, सुनते रहिए कार्यक्रम हमारी सेहत।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: मॉनसून के समय की आम परेशानी होती है आंख आना या आई फ्लू। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझने और इससे बचाव के तरीके जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। हमारा विषय है आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमने सोचा हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं आई फ्लू के बारे में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। हमारा विषय आज का है आई फ्लू, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं श्रोताओं के लिए यही जानना चाहूंगी कि ये आई फ्लू होता क्या है, और हम बहुत सुनते हैं जब भी मौसम बदलता है कि फ्लू बहुत हो जाता है, तो क्या उससे इसके क्या सिमिलैरिटीज हैं और हाउ इट इज डिफरेंट।
5: सो आई फ्लू मतलब कॉमन जो फ्लू हम कहते हैं, जो कि मॉनसून के बाद ज्यादा होता है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि कॉमन फ्लू वायरस की वजह से होता है, तो आई फ्लू का भी मेन रीजन वायरल इन्फेक्शन होता है, और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा, इसकी टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्म कंजंक्टिवाइटिस है, जिसमें कंजंक्टिवा जो कि आंखों की बाहर की लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। और मोस्टली एज आई सेड इसका कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, पर अभी इसका मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन है। और मेन कारण जो इसका है वो है एक्सेसिव रेनफॉल, उसकी वजह से, और माहौल भी काफी ह्यूमिड हो गया है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने का बहुत ही अच्छा साधन है, तो उसमें काफी वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं।
2: जी जी, तो इसीलिए शायद डॉक्टर साहब हम अक्सर जब बरसात का मौसम होता है तभी सुनते हैं कि आई फ्लू हो रहा है या जनरल फ्लू हो रहा है। तो ये भी बताइए कि इसका कैसे पहचान करें, अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसे क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे।
5: तो सिम्टम्स नॉर्मली आंखों का लाल हो जाना, आंखों में से पानी निकलना, कीचड़ आना, आंखें सूज जाना, या पेशेंट को ग्रिटिनेस का सेंसेशन होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। और पेशेंट्स को जनरली नॉर्मली सिम्टम्स, अगर ड्राइनेस भी होती है तो इतने सिम्टम्स नहीं होते, पर अचानक एक्यूटली जो सिम्टम्स आते हैं वो इस बीमारी के लक्षण हैं।
2: तो आपने जैसे कहा ड्राइनेस से भी यही सिम्टम्स होते हैं,
5: पर ड्राइनेस मतलब एकदम से सिम्टम्स एक्यूट नहीं होते, उसमें क्रॉनिकली आंखें जब ड्राई होती हैं तो ग्रिटिनेस होता है, डिसकंफर्ट होता है, पर इसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, ये सिम्टम्स ज्यादा, तो पानी बहना, डिस्चार्ज आना, ये जी, सारे सिम्टम्स होते हैं।
2: और ये संक्रमित होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। तो ये जो ये संक्रमण होता है कैसे होता है, मतलब आमतौर पर किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए अगर हमें लगता है किसी को है घर में या कार्यस्थल पर, तो कैसे इससे अपना बचाव करें।
5: हाँ, तो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन से मेरा मतलब है कि अपनी आंखों को टच ना करें, और जिसको संक्रमण हो चुका है वो किसी और फैमिली मेंबर के साथ उठे बैठे नहीं, उनको अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है जैसे तकिए हैं या फिर आई मेकअप है या कोई कॉन्टैक्ट लेंस है वो सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और अपने आंखों को और हाथों को बार बार वॉश करना चाहिए क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है। तो अगर कोई हाथों को बार बार नहीं धोएगा तो आंखों पे कीटाणु हो सकते हैं, हाथों पे कीटाणु हो सकते हैं और वो दूसरे

0: पर्सन पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथों को बार बार वॉश करें और हाथों को आंखों पे ना ले जाएं।
1: जी, तो आपने ये कहा कि पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है और हाथों को धोते रहना है और कांटेक्ट में कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा ना इस्तेमाल करें। तो ऐसा पीरियड कितने दिन तक का होता है, कितने दिन तक ये इस तरह से संक्रमित कर सकता है एक आदमी दूसरे को?
0: देखिए, डिपेंड करता है कि कितना सिवियर है। कई कई बार माइल्ड सा प्रॉब्लम होता है, कई बार डिजीज ज्यादा सिवियर हो जाती है। वो सिम्टम्स और साइंस को देख के हमें पता चलता है। तो कई कई बार इस 3-4 दिन में भी ठीक हो जाता है और कई कई बार इसमें 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो जब तक आपकी आंखों में एक्टिव साइंस है तब तक संक्रमित होने का डर होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब तक आपकी आंखें लाल हो, उसमें से पानी आ रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा, तब तक आप अपना और अपने साथ वालों का बचाव करते रहें।
1: जी, तो हमने ये बात की कि सावधानी क्या, क्योंकि आपने जैसे बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर पता लगता है कि आई फ्लू है या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका?
0: देखिए, जैसे मैंने कहा है कि माइल्ड केसेस में तो ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देने की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, या आंखों में कीचड़ आ रहा है तो उसको थोड़ा वार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं। तो जनरली दवाइयां सिर्फ आंखों को कंफर्ट देने के लिए होती है, पर अगर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आंखों में तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर सिम्टम्स आपके ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हैं या आपको लग रहा है कि आंखें ठीक नहीं हो पा रही 3-4 दिन में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि देखा जा सके कि बीमारी ठीक हो रही है या उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं।
1: जी, तो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, कुछ जटिलताएं भी आ सकती हैं, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे एक पेशेंट ये अपने आप समझे कि मेरा जो केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे जाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट के पास, तो ये और ये कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं?
0: नॉर्मली तो कंजंक्टिवा ही इन्वॉल्व होता है, पर जैसे मैंने कहा ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एडिनो वायरस जो है वो ज्यादा संक्रमित करता है। तो उसमें कॉर्निया जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है फ्रंट ऑफ द आई, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें छोटे छोटे वायरस के इन्फिल्ट्रेट्स जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से कई कई बार पेशेंट्स को ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है या फोटोफोबिया जिसमें आंखें प्रॉपरली खुल नहीं पाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि आपको दूसरे तरह की दवाइयां भी एडवाइस कर सकें। तो इस केस में कई कई बार स्टेरॉइड्स का यूज भी करना पड़ सकता है। अगर आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो गई है तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, पर वो अंडर सुपरविजन ऑफ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, मतलब आप अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस केस में जरूरी है कि आप अपने आंखों के डॉक्टर से सलाह करें।
1: जी, जैसे आप बता रही हैं कॉम्प्लिकेशंस में सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर वर्ग है जो ज्यादा प्रोन होता है आई इन्फेक्शंस के और आई फ्लू के, या जैसे किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं या वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, या कोई वर्क प्लेस पे ऐसी चीज होती है जो उसको बढ़ावा देती है?
0: देखिए, मेनली तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, एल्डरली पीपल भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर कोई होता है तो उसमें सिम्टम्स और साइंस ज्यादा होते हैं, पर बेसिकली ये क्योंकि एक संक्रामक रोग है इसीलिए क्राउडेड प्लेस में, और अगर आपके ऑफिस में या घर में सबको हुआ है तो आपको चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। तो इसीलिए किसी को भी ये हो सकता है, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपको होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बोला शुरुआत में या माइल्ड अगर किसी को होता है तो उसे जरूरत नहीं है डॉक्टर को दिखाने की, अपने आप भी ठीक हो सकता है। तो कुछ घरेलू उपचार है कोई जो करा जा सकता है? एक तो आपने बताया कि ठंडे पानी की सेक की जा सकती है, थोड़ा तो आपने बताया, इस पर आप थोड़ा सा और बताएं अगर विस्तृत जानकारी देना चाहें।
0: चार मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने फ्रीक्वेंटली आंखों को थोड़ा जो डिस्चार्ज आता है या कीचड़ आता है उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहिए, और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ओवर द काउंटर केमिस्ट की शॉप में मिल जाती है, जैसे टीयर आई ड्रॉप्स या किसी भी तरह की ल्यूब्रिकेटिंग, वो आप अपनी आंखों में डाल सकते हैं। पर मैं और कोई घरेलू उपचार जैसे प्याज का रस या कुछ और इस तरह की कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करूंगी
1: जी।
0: आप सिर्फ अपनी आंखों

0: को प्रॉपरली वॉश करते रहिए और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालते रहिए।
1: जी, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है डॉक्टर साहब, हम जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि डाइट का बहुत महत्व होता है, क्या इस केस में भी डाइट का कोई महत्व है आई फ्लू के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो?
0: हाँ जी, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है वायरल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फीवर भी इसके साथ साथ हो सकता है, या ये वायरल इन्फेक्शन जब आपको हुआ है, फ्लू हुआ है, तो इसके साथ साथ आपको आई फ्लू भी हो सकता है। तो जनरल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब आपको अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए ये सब चीजें तो लेनी ही चाहिए। और स्पेशली जब आप बीमार हैं, जब आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर सिर्फ आई फ्लू हुआ है तो मतलब हेल्थ एनीवे ठीक होनी चाहिए, पर उससे डायरेक्टली ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, तब आपको आई से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को समझ में आ गया होगा कि आई फ्लू से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बचना है और किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है जिसको ऑलरेडी आई फ्लू हुआ है, और इसके कारण और लक्षणों को पहचान कर जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। हम चलें इससे पहले डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि श्रोताओं को कुछ टिप्स आप जरूर दें कि कैसे अपने आंखों को स्वस्थ रखें और आई फ्लू से बचें।
0: तो आंखों को स्वस्थ रखने का एक ही तरीका है कि अगर आपके ऑफिस में या आपके काम करने की जगह पे लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, उस जगह पे जाने से बचिए, और अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहिए, और अपने हाथों को विदाउट वॉश करें कभी भी आंखों को रब ना करें, आंखों के पास हाथ ना लगाएं। आई थिंक अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप कंजंक्टिवाइटिस से बच सकते हैं, और जो कंजंक्टिवाइटिस से संक्रमित है उनको आप एडवाइस करें कि वो थोड़ा डार्क ग्लासेस पहन सकते हैं, वो भी अपने हाथों को बार बार वॉश करें और नॉन इन्फेक्टेड लोगों के पास ना जाएं, और बेहतर होगा कि वो अपने घर में ही कुछ दिन आराम करें, अपने ऑफिस ना जाएं,
1: तो जिससे कि बाकी लोगों को
0: ये इन्फेक्शन ना हो।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आई फ्लू के संबंध में डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा करी। हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, और आज हमने विस्तृत तौर पर डॉक्टर साहब से जाना कि आई फ्लू के क्या कारण होते हैं, लक्षण, और कैसे इससे बचा जा सकता है। आप हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में रहें और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर सुनीता दुबे, नेत्र रोग विशेषज्ञ से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdaily@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो हमें अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
2: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: जी, मैं प्रदीप कुमार मुखर्जी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। भारत में विंध्या, सतपुड़ा से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी प्रोटेरोजोइक काल में प्राचीन विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। यह समय की बात है जब पृथ्वी पर महाद्वीप आकार ले रहे थे। अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी कई अरब वर्ष पुरानी है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से गुजरती हुई यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। असल में अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 4 राज्यों के कुल 37 जिलों में फैली है। इन पहाड़ियों का सबसे अधिक लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। इन 37 जिलों में 11 जिले राजस्थान, 7 जिले हरियाणा, 5 जिले गुजरात और 4 जिले दिल्ली में हैं। दिल्ली में 4 जिले रिज क्षेत्र में आते हैं, जो दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोहा जिले में माउंट आबू में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1,722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अरावली असल में संस्कृत के आरा और वली शब्दों से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है चोटियों की श्रृंखला। राजस्थान की स्थानीय भाषा में अरावली को आड़ावाली भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुमूल्य खनिजों का भंडार है, साथ ही ये पर्वत श्रृंखला जैव विविधता और पारिस्थिति का अद्भुत संगम है। लेकिन पिछले काफी समय से ही अवैध खनन और निर्माण एवं शहरीकरण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। वैसे तो विगत काल में भी अरावली को लेकर कई कानूनी विवाद रहे हैं, लेकिन बीते वर्ष में 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया कि जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में घोर असंतोष को जन्म दिया। पर्यावरणविदों का कहना था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां केवल 10% मात्र हैं और केवल इन्हीं पहाड़ियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अरावली की 90% पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर होने के कारण खनन के लिए खुल जाएंगी। पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता ये थी कि अवैध खनन के कारण अरावली की पहाड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी। पर्यावरणविदों एवं स्थानीय लोगों के असंतोष और विरोध के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने फैसले पर 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी तथा 21 जनवरी 2026 को दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उस दिन न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 के अपने अंतरिम आदेश को आगे करते हुए दोहराया कि अवैध खनन से अरावली की अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाने जाने वाली अरावली जीवन रक्षक पर्वत श्रृंखला है, जो थार मरुस्थल की रेत को उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक हरित दीवार की तरह काम करती है। बिना अरावली के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ज्यादा शुष्क होते। ये मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर वर्षा बढ़ाती है। इसके अलावा ये पर्वत श्रृंखला भौमजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संरक्षण में महती भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव केवल पहाड़ियों तक ही सीमित न रहकर समस्त उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता पर भी गुणात्मक रूप से पड़ता है। अरावली की पहाड़ियाँ अनेक मुख्य नदियों जैसे लूणी, बनास, साहिबी और साबरमती का उद्गम स्थल है। ये नदियाँ कृषि और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से अरावली जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का जल इसकी चट्टानों से रिसता है और भौम जल में परिवर्तित होता है। एक तरह से अरावली प्राकृतिक स्पॉन्ज जैसी है, जो वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजती है। अरावली का आर्थिक

0: নিম, বাবুল, ঢাক ইয়ানি পলাশ, বের এবং গুগুল, আমলা জ্যাসে ঔষধীয় পৌধে তথা জন্তু জানবরো মে তেন্দুয়া, লকড়বগ্ঘা, নীলগায়, জঙ্গলি বিল্লি ওর চৌসিঙ্গা, মৃগ, সিয়াল, লোমড়ি আদি পায়ে যাতে। ইসকে আলাবা মনিটর লেজার্ড, নেউলা, মকড়ি, মেঢক, সাপ, বিচ্ছু আদি জীবোকে সমূহ ভি দেখনে কো মিলতে। আরাবলি মে অনেক অভয়ারণ্য ভি হ্যায় জো জৈব বিবিধতা সংরক্ষণ মে আপনি মহত্বপূর্ণ ভূমিকা নিভাতে। আরাবলি কি পাহাড়িও কো সন 1975 কে বাদ সে বেতহাশা ভূমি অধিগ্রহণ, অবৈধ খনন और गैर वाणिकी कार्यों के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वर्ष 1975 और 2019 के बीच अरावली पहाड़ियों का लगभग 8% यानी 5773 वर्ग किलोमीटर हिस्सा या तो लुप्त हो गया है या अपना पहाड़ी स्वरूप खोकर समतल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली में खनन तेजी से हो रहे विकास के कारण इन पहाड़ियों में अब तक 12 दरारें खुल चुकी हैं, जो राजस्थान में अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। इन दरारों की वजह से थार रेगिस्तान की धूल और रेत अब दिल्ली तक पहुंच रही है। इसके अलावा अधिक भौमजल के दोहन से हरियाणा और राजस्थान में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। विभिन्न गतिविधियों के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद की अरावली पहाड़ी, जिसके वन क्षेत्र में 10,000 एकड़ की क्षति हुई है, के जंगलों में पानी की कम उपलब्धता के कारण अब जंगली जानवर कम देखे जा रहे हैं। नतीजतन मृदा क्षरण के साथ जैव विविधता तथा वनस्पति आवरण में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा वन विभाग की ओर से वर्तमान वर्ष के आरंभ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम और नू जिलों के अरावली के जंगलों में अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण जल निकायों, प्राकृतिक झरनों और तालाबों को बहुत क्षति पहुंची है। जहां 2.5 दशक पहले तक 265 जल निकायों और झरनों आदि का अस्तित्व था, वहीं अब केवल 55 के करीब ही बचे। फरीदाबाद स्थित भड़कल झील के सब झरने अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं। वहीं गुरुग्राम के भौंडसी और दमदमा क्षेत्र के झरने अब सूखे पत्थरों के ढेर में परिवर्तित हो गए हैं। सूरजकुंड के पास स्थित प्राचीन तालाब और झरने, जो कभी भौमजल स्तर को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाते थे, अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुके हैं। अवैध खनन और अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित तो नूह का जिला बताया गया है। अरावली की पहाड़ियों पर अगर इसी तरह खतरा बना रहेगा तो इसका मरुस्थलीकरण प्रभाव भी तेज होगा तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। परिणाम स्वरूप जल संकट, प्रदूषण और तापमान तीनों में बढ़ोतरी होगी। इसका असर खेती, पानी, जलवायु, वन्य जीव और मानवों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। अतः अरावली पर्वत श्रृंखला की उपयोगिता और महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण तथा इसकी संपदा को उजड़ने और नष्ट होने से बचाने के प्रयास सक्रिय और बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि अरावली की बेजुबान पहाड़ियाँ अपने मूक क्रंदन से इंसानियत से गुहार लगा रही हैं कि हमें बचा लो? क्या इस बेजुबान पर्वत श्रृंखला का शोक भरा क्रंदन हमारे कानों में पड़ेगा? कभी एक हिंदी फिल्म में गाना सुनने को मिला था कि कभी कभी बेजुबान पर्वत हिलते हैं, पर्वतों के डोलने से दिल हिलते हैं। देखना ये है करावरी को लेकर दिल डोलते हैं या नहीं।
1: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि झा है। आज की इस वार्ता में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। भारत की संस्कृति सदैव प्रकृति के प्रति श्रद्धा, संवेदना और संरक्षण की भावना से ओतप्रोत रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही ये समझ लिया था कि मानव और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन दाता और पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और त्योहार भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। वट सावित्री, तुलसी विवाह, आमला नवमी, नाग पंचमी, छठ महापर्व और गंगा दशहरा जैसे अनेक पर्व प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति हमारी आस्था और जिम्मेदारी को प्रकट करते हैं। भारतीय समाज में पीपल, बरगद, नीम और तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की परंपरा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। हमारे गाँव में तालाब, कुएं, बावरियां और वर्षा जल संचयन की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति कितने सजग थे। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत की प्राचीन संस्कृति विश्व को एक नई दिशा दिखा सकती है। हमारे वेदों ने हजार वर्ष पहले ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 12वें मंत्र में कहा भी गया है, माता भूमि, पुत्रों हम पृथिव्या अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद के इसी सूक्त में कहा भी गया है कि यस्या

सर्वाः वृक्षाः वानस्पत्यः ध्रुवा अस्ति तिष्ठन्ति विश्वः पृथिव्यम् विश्वधायसम् धृताम् छाम् वदामसि। अर्थात जिस पृथ्वी पर वृक्ष और वनस्पतियां जीवन को धारण करती है उस पृथ्वी की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। ऋग्वेद में जल का महत्व बताते हुए कहा भी गया है आपो ही तिष्ठा मयो भुवः, अर्थात हे जल तुम सुख और जीवन प्रदान करने वाले हो। यजुर्वेद में शांति मंत्र के माध्यम से कहा भी गया है ओ

0: शांति ही, अर्थात आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो और समस्त सृष्टि में शांति हो। हमारे उपनिषदों ने हजारों वर्ष पहले ही पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र दे दिया था। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, अर्थात हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है, इसीलिए हमें प्रकृति का उपभोग नहीं बल्कि उसका संरक्षण करना चाहिए। वही तेन तक्तेन भुंजिथा का संदेश है कि आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करें, लालच से नहीं। यहाँ आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भारतीय स्वरूप है। उपनिषदों में पर्यावरण संरक्षण शब्द आधुनिक अर्थों में नहीं मिलता, लेकिन प्राकृतिक समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान, संयमित उपभोग, सह अस्तित्व और सभी प्राणियों के कल्याण का गहरा संदेश दिया गया है। विशेष रूप से ईशावास्यों, तैतरीयी, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कट उपनिषद में ऐसा विचार मिलते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के दार्शनिक आधार माने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपनिषद और उनके संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहला मंत्र में लिखा गया है, ईशावास्य मिदम सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विधनम्, अर्थात हम संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्याग और संयम की भावना से उसका उपभोग करो, किसी वस्तु पर लालच मत करो। इसका पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के संसाधन सभी के हैं, आवश्यकता अनुसार उपभोग और संरक्षण की भारतीय जीवन दर्शन है। तैतरीय उपनिषद में पृथ्वी, जल, अन्न और प्राण के संबंध को स्पष्ट किया गया है। इसका प्रसिद्ध वाक्य भी है, अन्नम न निन्न घात अन्नम बहु कुर्वीत, अर्थात अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए तथा अन्न की अधिक से अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए। इसी का पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, कृषि और प्रकृति का संरक्षण, खाद्य संसाधनों का सम्मान और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। छांदोग्य उपनिषद में कहा भी गया है, सर्व खलिविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। इसका पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, यदि संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है तो वृक्ष, नदी, पर्वत और सभी जीवों का सम्मान हमारा धर्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में सभी प्राणियों को साथ सह अस्तित्व और करुणा का संदेश दिया गया है। इसका प्रसिद्ध प्रार्थना के स्वरूप में कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। यद्यपि ये सीधे पर्यावरण पर नहीं, लेकिन सत्य, संतुलन और कल्याण पूर्व जीवन का संदेश देता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कठ उपनिषद में मनुष्य को संयम, आत्मनियंत्रण और संतुलित जीवन अपनाने की शिक्षा दी गई है। आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगल की कटाई और जैव विविधता के संकट ने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसका उत्तर हमारी प्राचीन संस्कृति में छुपा है। यदि हम प्रकृति के प्रति सम्मान, संयम और संरक्षण की भारतीय परंपरा को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो पर्यावरण की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। हमारी ऋषियों ने हजार वर्ष पहले ही संदेश दे दिया था कि प्रकृति का सम्मान ही मानव सभ्यता का सम्मान है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों में वृक्षों और वनों के महत्व का उल्लेख किया है। उनका एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, दश कूप समावापी दशवापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्रो दश पुत्रो समः द्रुमः, अर्थ दस कुओं के बराबर एक तालाब, दस तालाब के बराबर एक झील, दस झीलों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्र के समान एक वृक्ष माना गया है। हम सभी छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जल की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्वच्छता बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यही हमारी संस्कृति का संदेश भी है और समय की आवश्यकता भी।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: बराबर पास आते हफ्तों सीधे ये तेहरान इला साते यादेन बराबर पास आते नौए तेहरान पक्ष में शवत इनक बख्शे फारसी बरून मर्दी आकाशानी बरनामे सुबह ये खुदरा दर मौजे कूता।

0: حجم التجارة الثنائية السنوية في السلع والخدمات ليصل إلى 350 مليار روبية بحلول عام 2030، وذلك في أعقاب محادثات جرت في أوكلاند بين رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي السيد كريستوفر لوكسون. كما وقعت الهند ونيوزيلندا 5 مذكرات تفاهم رئيسية تشمل مجالات الدفاع وتربية الحيوانات وإنتاج الألبان والسياحة والرياضة وإدارة الكوارث، مما يمثل فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين. بدوره صرح السيد مودي خلال المحادثات بأن زيارته لنيوزيلندا تشكل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية وستضيف زخما جديدا للروابط بين البلدين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران مستحدثة ممولا رئيسيا لمجتبى خامنئي الزعيم الجديد في إيران، إلى جانب 13 فردا وقيانا آخرين، وذلك في أعقاب استئناف طهران لحجماتها على ناقلات النفط في مزيق هرمز، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستحدث المصرفي ورجل الأعمال الإيراني المقيم في دبي اليانساري، الذي سبق وأن فرضت له بريطانيا عقوبات لدوره في دعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وكيانات أخرى ماليا. من المقرر أن تدخل البحرية الهندية اليوم فرقاطة الشابة ماهيندرا جيري، وهي الثالثة من فئة بروجكت 17A المصنعة محليا، إلى أسطولها الشرقي في مدينة فيساكاباتنام بولاية أترا براديش، مما يمثل محطة حامة أخرى في مسيرة الهند نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتوطين صناعة السفن الحربية. وفي كلمة ألقاها وزير الدفاع سيرا ناسين أمام أفراد البحرية عشية حفل التدشين، أكد مجددا على دور الهند كضامن رئيسي للسلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين الذين ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4000 قتيل، حيث صرح رئيس البرلمان الفنزويلي السيد خورقي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 16740 آخرون جراء زلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر في 24 من يونيو الماضي. في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حجزت إسبانيا مقعدها في الدور نصف النهائي بعد فوزها على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية من الدور الثماني والتي أقيمت الليلة الماضية. وفي وقت سابق تأهلت فرنسا إلى نصف النهائي بفوز مرح بنتيجة 2-0 على المغرب في المباراة الأولى من الدور الثماني. وفي بطولة ويمبلدون للتنس، ستواجه السيدة كارولينا موخوفا من جمهورية التشيك مواطنتها السيدة ليندا نوسكوفا اليوم في لندن ضمن نهائي فرد السيدات، حيث تسعى كلتا اللاعبتين لحصد لقبهما الأول في البطولة. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وعشرها، ودمتم حيا، إلى اللقاء.
1: نمسكار، آكاشواني سماچار کے ساتھ میں جاگرتی شرما. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई. दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया.
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा. मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे.
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally.
5: is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing at the conclusion of their talks.
4: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum.

0: मैं हूँ आपके साथ रेनू
1: और मैं हूँ दीपा। तो कीजिए स्वीकार हमारा
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।
0: और कैसी हो दीपा, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है।
1: अरे रेनू मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता भी ठीक होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। फिल्म थी वो कौन थी।
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वयं पर विश्वास रखिए, दुनिया आपके कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, रेनू तुम बताओगी?
0: हाँ, बिल्कुल, उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, प्रतिभा और संभावनाएं छिपी होती हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन चुनौतियां भी अवसर के रूप में बदलने लगती हैं और सफलता हमारी ओर स्वयं कदम बढ़ाती है।
1: और दोस्तों, इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अपने सपनों को साकार करता है।
0: बिल्कुल। तो दीपा, ये तो हुई हमारे आज के विचार की, सुविचार की, और इसी के साथ हम अपना आज का प्रश्न पूछ लें। क्यों? क्योंकि श्रोताओं को आजकल हमारे प्रश्न का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इससे हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, सीधे बातचीत कर पाते हैं, और कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो दीपा, जल्दी से बता।

0: आओ कि हमारा आज का प्रश्न क्या है।
1: दोस्तों, फिल्में तो आप सभी देखते होंगे और आज आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको अभी तक याद हो और आपने उसे कई बार देखा हो और आज भी उसे देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, यानी आपको बताना है कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और इसके बारे में हमें झटपट से लिख भेजिए और पसंदीदा फिल्म का नाम, उसके साथ आप ये भी बताइए कि आपको ये फिल्म क्यों पसंद आती है, यानी आपकी नजर से उसमें क्या खासियत है। और इसके लिए हमारा मेल आईडी
1: दोस्तों नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
0: तो हमें आपके मेल्स का बेसब्री से इंतजार है और आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम बताइए। तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: इसमें जो है दीपा मुख्य भूमिकाएं जो है इस फिल्म में मुमताज और देवानंद ने निभाई थी और संगीत एस डी बर्मन का था और गीतकार महान गीतकार जो है थे वो इसमें गोपाल दास नीरज जी थे। और देखो अब तुम क्या बताने वाली हो आज डे विशेष क्या है
1: आज दोस्तों। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी।
0: बिल्कुल। और इसका उद्देश्य देखो दीपा ये है इस दिवस को मनाने का कि जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर जो कि आज वैश्विक समस्या बन चुकी है तो उस पर वैश्विक चेतना भी जागृत करना आवश्यक है, इसीलिए इस दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। और देखो जब दिन विशेष की बात हम कर रहे हैं तो दिन विशेष में आज हम बात करते हैं भीष्म साहनी की, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और
1: भीष्म साहनी दोस्तों यथार्थवादी और प्रगतिशील एक ऐसे कथाकार थे जिनकी रचनाएं विभाजन की त्रासदी और शोषित वर्ग के संघर्षों की प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं।
0: बिल्कुल। भीष्म साहनी की रचनाएं समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज और यथार्थ का सटीक दर्पण हैं। उनका प्रमुख उपन्यास तमस विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता की विभीषिका पर आधारित एक प्रामाणिक दस्तावेज है। और पता है तुम्हें दीपा, इसी नाम से ना जो जाने माने निर्देशक गोविंद नहलानी जी हैं उनके निर्देशन में एक फिल्म बनी थी तमस नाम से ही, और इसमें मुख्य किरदार जो था वो ओमपुरी जी ने निभाया था और ये फिल्म भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। और अब जब फिल्मों की बात चली रही है तो हमारा आज का प्रश्न भी हमारा फिल्मों से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे हाथ में लगता है कि कुछ मेल्स आए हैं जो तुम, कौन सा मेल है ये?
1: नवीन भाटिया जी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि वक्त मूवी जो है उनकी और उनके पापा की फेवरेट फिल्म थी और उन्हें बहुत पसंद थी और उसमें मिलना बिछड़ना और काफी उसमें जो चलता है वो उनको बहुत पसंद थे, उसके गाने भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद।
0: हाँ भाई, ये मूवी तो बहुत अच्छी थी ही। बिल्कुल नवीन भाटिया जी, और आपने लिखा हमें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नवीन भाटिया जी मोतीनगर से लिख रहे हैं ना। और देखिए सही बात है, वक्त फिल्म जो है मल्टी स्टारर एक फिल्म थी और इसमें शानदार कहानी और तकनीक के प्रयोगों के लिए ये जानी जाती है। और इसमें जैसा कि तुम्हें भी दीपा तुमने भी देखी होगी, इसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना और शर्मिला टैगोर, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था और वाकई इसमें कालजयी जो गीत संगीत था इसका वो भी था। और कौन सा मेल है?
1: और
0: ये है डी राजेश्वर राव जो है ये लिखते हैं शक्करपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से। हाँ तो इन्होंने भी कहा है कि भाई खट्टी मीठी यादें जो है ये तो हमारी मतलब है ही है पिक्चरों से जुड़ी हुई। और इसमें जो एक रेखा जी की फिल्म के बारे में इन्होंने लिखा है तो ये फिल्म भी इनको बहुत पसंद है। और एक और ये पुलका भाटिया जी ने लिखा है कि इन्हें शोले फिल्म बहुत पसंद है। हाँ तो शोले फिल्म तो भाई देखिए सबको ऑल टाइम फेवरेट है, सबकी बहुत पसंद है सबको। और इसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी फेवरेट फिल्म तो है ही, और डीडीएलजे को भी कह रही है कि इनकी फेवरेट फिल्म है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और तो डीडीएलजे भी भाई बड़ी फिल्म अच्छी थी और शाहरुख खान और काजोल की इसमें जोड़ी बहुत पसंद की गई थी बहुत। हाँ और जो प्रवासी भारतीयों के अंदर जो उनकी पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी, तो भाई इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे साथ, और जो है इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने प्रश्नों का जवाब हमारे दीजिए। और फिर अब तक सुनवाते हैं ये गीत।

तंग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मोरी पायलिया, फिल्म थी जुगनू और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, और कुछ मेल तो हमारे दर्शक करते जा रहे हैं भाई, ऐसा विषय ही है क्योंकि मूवी तो सबको बहुत पसंद आती है, हमारे मनोरंजन का सबसे देखा जाए तो प्रमुख जरिया है और हम लोग सालों साल मूवी देखते आ रहे हैं। तो ये जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अमिता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं कि ये इनको भी वक्त मूवी बहुत पसंद आई है। अच्छा। और इन्होंने इसका कारण भी बताया है कि क्योंकि इस मूवी में जीवन की सच्चाई है इसलिए बहुत पसंद आई है। और इन्होंने एक चीज और भी लिखी है कि उम्मीद दूसरों पर करोगे तो ये तुम्हारी

0: कमजोरी बन जाएगी और उम्मीद खुद पे करोगे तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएगी। भाई वाह, क्या बढ़िया बात कही है इन्होंने। और देखिए, अगर मूवी देखी है इन्होंने और उससे कुछ उसका उद्देश्य और उसका मतलब जाना है, कुछ जीवन में अगर उन्होंने पाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। फिल्में हमारे समाज का दर्पण होती हैं और इन फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और तो ये फिल्में अगर सार्थक तभी हैं जब वो अपने संदेश देने में कामयाब हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसके साथ ही ये महेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, ये हरियाणा से लिख रहे हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। तो इन्होंने भी हम लोगों को नमस्कार भेजा है और कहा है कि इन्होंने बाजार फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। तो भाई, बाजार फिल्म भी बहुत एक क्लासिक मूवी थी और बहुत ही अच्छी है, और ये फिल्म आपको पसंद आई तो सही बात है, याद दिला दिया आपने, ताजा कर दिया। गाने भी बहुत अच्छे थे, सही बात आप कह रही हैं। और बहादुरगढ़ से ही ये श्रीपाल गोयल जी लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं ये दीपा जी, आप बताइए।
1: हाँ, इनको जो है, इनको ये फिल्म बहुत पसंद है, फिल्म भावना जी। और इसमें ये कह रही हैं कि शबाना आजमी भावना की भूमिका में थी और ये इनको बहुत पसंद है। इसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है, इस फिल्म में इन्होंने बताया कि दिखाया गया है। और ये फिल्म में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है।
0: अच्छा, भावना फिल्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने एक अलग सी फिल्म पसंद की और इसको हमसे अपना विचार और अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए, तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, एक और मेल आया है, ये सोनाली का है और ये कह रही हैं कि इनको फिल्म आंधी पसंद है। सुचित्रा सेन का किरदार बहुत अच्छा था, संजीव कुमार लेजेंड। सही बात है भाई, बहुत अच्छी फिल्म थी ये और बहुत इसके गाने भी पसंद हैं। तो सोनाली जी, महेश अग्रवाल जी और सुदर्शन मुखी जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने विचार व्यक्त करते रहिए। और तब दीपा, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो तुम क्या बताने वाली हो?
1: मैं अब बताने वाली हूँ, हम बात करेंगे अब आर्थिक आत्मनिर्भरता और बचत की। दोस्तों, आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे जो मजबूत नींव है वो है बचत। आय कम हो या अधिक, यदि नियमित बचत की आदत नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा अधूरी रह जाती है। छोटी छोटी बचत ही समय आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती है।
0: बिल्कुल सही बात कहा तुमने दीपा। और देखो ना, बचत को की इस जरूरत को और इसके महत्व को अगर सबसे ज्यादा समझा है किसी ने तो हमारे घर की महिलाओं ने, क्योंकि उन्होंने जो सीमित आय भी उनके पास अगर आती है तो जो पूरे घर का बजट बनाती हैं उसके बाद भी वो भविष्य में के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रेनू, और ये उनकी दूरदर्शिता तो है, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था ने बचत को और अधिक सुरक्षित और लाभदायक बना दिया है। कई बैंक ऐसी सुविधाएं देते हैं जिनमें खाते की अतिरिक्त राशि स्वतः अधिक ब्याज वाले विकल्प में चली जाती है, यानी बचत भी सुरक्षित रहती है और उस पर बेहतर लाभ भी मिलता है। और अब सरकार भी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कुछ न कुछ सरकार भी कर रही है महिलाओं की बचत योजना के लिए।
0: बिल्कुल, तो दीपा बिल्कुल सही बता रही हो। और देखो ना, डिजिटल युग है तो इसका फायदा भी हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत काम की चीज है, तो इससे इसके फायदा उठाना चाहिए। और कई सारी बचत की जो माध्यम है, कई सारी चीजें हैं, उसको जानना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि UPI का उपयोग करना चाहिए, अपने पैसों का हिसाब स्वयं रखिए, क्योंकि डिजिटल सशक्तिकरण ही आत्मनिर्भरता की पहचान बन रहा है और यही सही मायने में सशक्तिकरण है आपका।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना गीत आइए बहार को हम बांट लें, फिल्म थी तकदीर और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, जो हमारे श्रोतागण हैं वो देखो ना कितना मतलब इस समय उनको आनंद आ रहा है और अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में अपने बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो इस मेरे हाथ में इस समय जो मैसेज है वो है इदरीस सैफी जी का, ये भी बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। तो इन्होंने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। भाई, ये बहुत अच्छी मूवी थी, सही बात है, हम सबको बहुत पसंद है। राज कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे इसमें मेन लीड रोल में, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे थे और बहुत ही अच्छी मूवी थी, इसके ने भी बहुत अच्छे थे। और देखो, इसी के साथ हमारे पास रजत भूषण जी का भी ये मेल आया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इन्हें फिल्म अंगूर बहुत पसंद है क्योंकि बिना शोर शराबे के शानदार अभिनय और स्वाभाविक हास के दम पर ये मनोरंजन करती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और याद आ गया मुझे भी उसके काफी सीन और संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा से डबल रोल में थे ना। हाँ, बिल्कुल सीन सिक्वेंस इतने बदलते थे इसके कि हाँ मजा आ जाता था, बिल्कुल लगता था अगले पल क्या होगा। देखो, इन्होंने भी कुछ लिखा कि हर बार इसे देखने पर कोई ना कोई नया पहलू और नया हास्य सामने आता है, यही कारण है कि वर्षों बाद भी ये फिल्म उतनी ही ताजा और आनंद। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सच में ये फिल्म जब भी देखो तो हंसी आ ही जाती है और हंसाना किसी फिल्म में जो अगर ये हंसाने का मादा रखती है कोई मूवी तो वाकई वो बहुत बहुत मतलब सशक्त मूवी होती है, तभी वो किसी को हंसा पाती है।
0: हम जाते इसलिए हैं कि हम मूवी देखकर खुश हों।
1: हाँ, सही बात है, और वो उस चीज को अगर फुलफिल करती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है। और इसी के साथ देखो, ये गौरी शंकर जी ने भी लिखा है नागलोई से, और गौरी शंकर नागलोई हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि मतलब पहले तो ये हमें नमस्कार कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि सन 80 तक की फिल्में मैंने देखी हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जितेंद्र जीने की राह, अच्छा जीने की राह फिल्म के बारे में ये बता रहे हैं, सुनील दत्त और नंदा मुझे बहुत अच्छी लगी और ये फिल्म भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है,
0: बड़ी बात
1: है। अगर हार नहीं मानना चाहिए, ये कुछ संदेश देती हुई फिल्म है और दर्शकों तक वो उतने संदेश

0: पहुंचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दीपा, एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात और जरूरी हमें करनी जरूरी हो जाती है कि हम जो है बात करते हैं, अगर तो देखिए फोन हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है,
1: बहुत ज्यादा आज के समय में तो
0: बहुत जरूरी है और सबके पास होता ही है, लेकिन अति ना किसी चीज की बहुत देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट डालती है। उसी में से एक है हेडफोन और ईयरफोन, अगर इसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा रेनु, और ईयरफोन और हेडफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे कानों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, और इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सुनने की क्षमता कम होना, कान में लगातार सीटी बजना या फिर संक्रमण। ये इतना खतरनाक है कि इससे आपके सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल, और ये देखो ना, ये तेज आवाज यानी कि 85 डेसिबल से ज्यादा अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं या गेम खेलने में कान खेलते हैं और हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कान के आंतरिक हिस्से की कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, इससे आपको बहरापन, टीनिटस की समस्या हो सकती है। टीनिटस यानी कि कानों में झनझनाहट, भनभनाहट या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं।
1: और ईयरबड्स दोस्तों कान के बहुत अंदर तक जाते हैं, इन्हें ज्यादा देर लगाए रखने से कान के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिससे नमी और बैक्टीरिया पैदा होते हैं, ये कान में दर्द और फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक हेडफोन पहनते हैं तो दिमाग पर भी इसका दबाव पड़ता है, जिससे चक्कर आना, ध्यान केंद्रित होना और ना केंद्रित होना और स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याओं का भी सामना आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो ना निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो होती है वो दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है,
1: और इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हेडफोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही किया जाए, यानी दिन में केवल 1 से 2 घंटे ही, और अगर किसी काम से ज्यादा यूज करना पड़ रहा हो आपको तो बीच में ब्रेक जरूर लें।
0: बिल्कुल, और ये ब्रेक ना लेने का एक नियम है, जैसे कि 60-60 का नियम अपनाएं, जैसे इसका मतलब ये है कि 60% की वॉल्यूम पे आप कोई भी चीज सुनते हैं तो 60% की वॉल्यूम उसका रखें और 60 मिनट से ज्यादा तक उसका इस्तेमाल ना करें, यानी कि उसको ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रेक लेना है। और ईयरफोन को हमेशा साफ रखें और कभी भी दूसरों के साथ अपना ईयरफोन शेयर ना करें। तो दीपा, ये तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन एक बार मेल आईडी हम फिर से श्रोताओं को बता दें कि हमारी मेल आईडी क्या है, बताओ।
1: हाँ, हमारी fmgold@gmail.com।
0: तो इसी मेल आईडी पर आपके मेल्स का इंतजार है हमें, और प्रश्न तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक कि आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है जो आज तक आपको याद है और आपने कई बार उसे देखा है, और वो मूवी आपको क्यों पसंद है।

0: अभी आपने गीत सुना सुनो कहो, फिल्म थी आपकी कसम और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर।
1: और ये देखो एक मेल और मेरे हाथ में है, वैसे तो इनका मेल पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी इन्होंने मूवी का नाम लिखा है। ये डी राजेश्वर राव हैं जो शकरपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको फिल्म चुपके चुपके बहुत पसंद है और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा इनको, इसमें धर्मेंद्र का जो है वो बहुत काम अच्छा लगा। तो ये मूवी तो सही में हम लोग को भी याद आ गई, कॉमेडी उस समय की थी, कॉमेडी के साथ और इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छा संदेश इसमें था।
0: बहुत सारे कलाकार थे।
1: हाँ दीपा, और देखो ना उसमें उन्होंने बातों बातों में जो हिंदी का एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का जो था उसमें उन्होंने ये एक तरह से संदेश उसमें दिया कि जो हिंदी का व्याकरण है ना वो हमारा इतना सशक्त है कि उसके मुकाबले अगर तुलना की जाए तो किसी और भाषा में वो बात नहीं आती जितनी कि हिंदी का व्याकरण सशक्त है। और दीपा कहना पड़ेगा ना कि हमारी फिल्में जो है ना वो वैश्विक पटल पर और हर जगह जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसका सबसे बड़ा देखा जाए तो संदेश वाहक हमारी फिल्में होती हैं और बहुत ही अच्छी छाप इससे
0: संदेश दे पाती हैं।
1: इसीलिए ना मूवी को सॉफ्ट पावर कहा गया है कि वो हमारे देश की या किसी भी देश की सॉफ्ट पावर होती हैं। वो आसानी से आपकी संस्कृति और आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, सब कुछ जो है वो कन्वे कर देती हैं वैश्विक पटल पर। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी मूवी है जो आपको पसंद आई है
0: और हमारे
1: अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। और देखो एक और संदेश मेरे हाथ में है, ये कामायनी है, लक्ष्मीनगर से लिख रही हैं। इनकी फेवरेट मूवी है दो बदन और ये लिख रही हैं कि इसमें भावनाओं का ऐसा मार्मिक और मतलब जो इस ये वर्णन किया गया है वो किसी का भी इससे जो है वो संवेदना से देखा जाएगा तो जी भर आएगा। बिल्कुल सही बात कही कामायनी जी आपने और लगता है आप भी बड़ी संवेदनशील व्यक्तित्व रखती हैं तभी आपको ये चीजें और इस तरह की मूवी पसंद आती हैं। और देखिए कहीं ना कहीं होता है कि जो जैसा होता है या जैसी उसके विचार जहां पर मतलब कनेक्ट होते हैं उस मूवी को वो व्यक्ति पसंद करता है, ये भी एक बड़ी बात है।
0: और उस समय की रेणु ये भी बात थी कि मूवी के साथ साथ गाने भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। आज तक सब लोग
1: बिल्कुल सही बात कही तुमने। और देखो ना इसी तरह से लोग हमें लिख रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमें जुड़ रहे हैं। लेकिन अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक देखा जाए तो खासकर दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी बात है कि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 1 जुलाई से लागू हो गई है। 31 मार्च 2030 तक ये प्रभावी रहेगी और ये नीति क्या है, आपको इसमें दिल्ली सरकार द्वारा कौन सी छूट या सब्सिडी दी जा रही है, बात करते हैं इस बारे में।
0: दोस्तों इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको 30,000 तक की और थ्री व्हीलर लेना चाहते हैं तो इस पर आपको 50,000 तक की छूट यानी सब्सिडी दी जाएगी।
1: और अगर आप 30,00,000 तक की इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो इस पर आपको कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। इस पर दिल्ली सरकार द्वारा 100% सब्सिडी आपको दी जा रही है।
0: और इसी तरह अगर आप N1 कमर्शियल वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1,00,000 तक की सीधी छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा इस नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई ईवी खरीदने पर 1,00,000 तक का स्क्रैप इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है।
1: तो इस नीति से जुड़ने के लिए दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और इस तरह दे सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना कली कली, जिसकी फिल्म थी मंचली और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, हमारा वक्त तो अब कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है, लेकिन हमारे श्रोता जो है मेल भेजते जा रहे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ मैसेजेस और ले लेती हूं। इसमें देखो, ये मैसेज लिखा है रघुवर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब ने, और ये लिखती है कि इन्हें भी जो है वक्त फिल्म बहुत पसंद आई। और देखो, इन्होंने कहा है कि जो है वक्त में जो संदेश दिया गया था ना कि एरोगेंस जो है अच्छी बात नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, तो भाई हमारे बड़े जागरूक श्रोता हैं, वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और उसके संदेश को भी समझ रहे हैं। और इसी तरह से ये अखिलेश राठौर हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे हम आपके हैं कौन मूवी बहुत अच्छी लगी। तो भाई, अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है, तो मुझे यानी रेनू को
0: और मुझे यानी दीपा को दे अनुमति,
1: नमस्कार।
2: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary E. Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today.
5: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multifunction radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit, and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
4: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries.

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक थे राजा नवादे और निर्माता थे आर चंद्र। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीत थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के। इस जो फिल्म की कहानी थी वो कन्नड़ उपन्यास हंस गीते से प्रेरित थी। साथियों, इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे वो थे भारत भूषण साहब, निमी जी, कुमकुम, ओम प्रकाश, लीला चिटनिस और मनमोहन कृष्ण।

साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि यह फिल्म अपने संगीत के कारण आज भी भारतीय सिनेमा की महान कृतियों में गिनी जाती है। दोस्तों, इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो भारत भूषण साहब उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिन्हें संगीत प्रधान फिल्मों का बादशाह कहा जाता था। बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, श्री चैतन्य महाप्रभु और बसंत बहार जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी थी। उनके अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे भावनाओं को बहुत सहजता से चेहरे पर उतार देते थे। बसंत बहार में उन्होंने गायक गोपाल का किरदार निभाया जिसे आज भी हम सभी याद करते हैं और हमारे दिलों में वो अभी भी बसते हैं।

साथियों, इस फिल्म के गीतों के साथ साथ इस फिल्म की जो कहानी है वो भी बड़ी दिल को छू लेने वाली है। कहानी है गोपाल नाम के एक प्रतिभाशाली युवक की। गोपाल बचपन से ही संगीत का दीवाना है। उसके पिता चाहते हैं कि वह पारिवारिक परंपरा निभाए, लेकिन गोपाल का मन केवल सुरों में बसता है। उसकी प्रतिभा से कई लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। दरबारी संगीत प्रतियोगिता से पहले दोस्तों उसके विरोधी छल करते हैं और उसकी आवाज छिन जाती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आवाज खो चुका गोपाल टूट जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है गोपी से। गोपी उसका हौसला बनाती है। साधना, विश्वास और कठिन परिश्रम के बाद गोपाल फिर से अपनी आवाज प्राप्त करता है और अंत में वह संगीत प्रतियोगिता जीतकर यह सिद्ध करता है कि सच्ची कला को कभी हराया नहीं जा सकता।

साथियों, बसंत बहार का संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। शंकर जयकिशन ने यह साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत भी लोकप्रिय हो सकता है। फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान गायकों ने स्वर दिया। सत्यों, विशेष रूप से गीत की गुलाब जूही में मन्ना डे और भीमसेन जोशी की जुगलबंदी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अमर मानी जाती है।

दोस्तों, इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म की शूटिंग में संगीत की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। साथ ही मन्ना डे स्वयं कहते थे कि भीमसेन जोशी के साथ गाना उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। फिल्म का लगभग हर गीत किसी न किसी शास्त्रीय राग से प्रेरित है। दोस्तों, आज भी संगीत सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं, इस फिल्म के गीतों को अध्ययन सामग्री की तरह सुनते हैं। साथियों, शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत के सबसे सफल संगीतकारों में से गिने जाते हैं, लेकिन बसंत बहार उनके करियर की सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी, क्योंकि पूरी फिल्म शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। उन्होंने भारतीय रागों को सरल और लोकप्रिय रूप से देकर हर वर्ग के श्रोताओं तक पहुंचाया है। साथियों, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें कविता भी है, दर्शन भी और संगीत की आत्मा भी। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रभावशाली लगते हैं जितने कि 1956 में लगते थे।

0: दोस्तों आज हमने जाना एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को घर घर पहुंचाया। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ थी आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। लीजिए अब सुनते हैं समाचार
1: कुछ और गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अज ऑकलैंड च वफद पद्धरी गलबात की। दोहां देशां ने पंज महत्वपूर्ण समझौतों ते दस्तखत किए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज विशाखापट्टनम च स्वदेशी तौर ते विकसित स्टैल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी नूं समुद्री फौज के बेड़े च शामिल किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लाइब्रेरियां की अहमियत नूं उजागर करदिआं नौजवान पीढ़ी नूं इन्हां नाल जुड़न की अपील की है। केंद्रीय सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने अज नागपुर विच ब्रिक्स देशां दे ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की तीजी मीटिंग की प्रधानगी की। भारत ते इंग्लैंड दरमियान पंज मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का पंजवां ते आखिरी मैच अज साउथहैम्पटन विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अज ऑकलैंड विच वफद पद्धरी गलबात की। दोहां देशां ने रक्षा, पशु पालन, डेयरी, सैर सपाटा, खेडां ते आफत प्रबंधन नाल संबंधित पंज महत्वपूर्ण समझौतों ते दस्तखत किए। रक्षा खेत्र के समझौते नाल फौजी सहयोग ते रणनीतिक भाईवाली नूं हुलारा मिलेगा। पशु पालन ते डेयरी संबंधी समझौता खोज, नवीनता ते उन्नत तकनालोजियां दे आदान प्रदान नूं उत्साहित करेगा। सैर सपाटे संबंधी समझौता दोवां देशां विचकार सैर सपाटे दे यात्रा नूं सहयोग नूं वधाएगा। खेडां दे खेत्र विच इक सांझी कार्य योजना भी अपनाई गई है, जदों के आफत प्रबंधन समझौता आफत तैयारियां, राहत अते बचाव कार्यां विच सहयोग मजबूत करेगा। गलबात दौरान श्री मोदी ने कहा कि 40 सालां बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का दौरा दोहां देशां विचकार संबंधां विच इक इतिहासक मील पत्थर है। उन्होंने कहा कि दोहां देशां ने एक रणनीतिक भाईवाली स्थापित करने लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो भविष्य के सहयोग को एक नवी दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते च हुई प्रगति की शलाघा की ते कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत खेत्र विच शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाद विच दोहां प्रधानमंत्रियों ने ऑकलैंड विच गलबात की। भारत न्यूजीलैंड व्यापारिक शमूलियत 2026 प्रोग्राम विच भी हिस्सा लिया। इस मौके ते श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड विचकार सिर्फ 9 महीनों विच मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना दोवां देशों विचकार मजबूत भरोसे का प्रमाण है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरि को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तआवुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आजाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैनुल अक्वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहिदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहिदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए

0: Maternal and Child Health through informed reproductive choices and quality family planning services. On to sports. India will face England in the fifth and final T20 international of the series today at Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bawi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि

0: दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS

0: इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी

0: में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रहना तवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: हमारे सभी श्रोताओं को का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार, और आज का ये आधा घंटा समर्पित है एक ऐसे अभिनेता को जिनका आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को जन्मदिन होता है। तो सबसे पहले आकाशवाणी की ओर से हमारे इस अभिनेता को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और वो ये अभिनेता है जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिलों की धड़कन बनकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, तो इसी फिल्मी सफर में मेरे साथ यानी रैना तंवर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रैना है तो कुछ तो आपको कहना है। फिर जल्दी से फोन उठाएं और बताएं हम किस अभिनेता की आज फिल्मी दुनिया रोचक किस्सों और बातों नगमों को बहार को आज पेश करेंगे। आपको बस करना क्या है, आपको अपना जवाब लिखकर हमें भेजना है इस ईमेल आईडी पर, जो कि है ipradiodelhi@gmail.com। जो हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब के साथ हमें मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस एक ही कलाकार कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा इन्हीं अभिनेता के इस खूबसूरत नगमे के साथ।
2: ओए तौबा, क्या आवाज है।

जल्दी से गेस कीजिए और मैसेज कीजिए, इंतजार है आपके मैसेज का। और जो सबसे पहले मुझे मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता।

यस ओए तो बा, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब दिया है वो है तुलसी मस्कीन। जी हाँ, और उन्होंने सही जवाब दिया है, सबसे पहले सही जवाब दिया है। तो आज आपको मिलता है हमारा फेवरेट श्रोता का खिताब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड सितारे की जिनका असली नाम मनोज तुली था, मगर फिल्मी दुनिया में उन्हें कुमार गौरव के नाम से जानते हैं। 11 जुलाई 1956 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे प्रसिद्ध सुपरस्टार राजेंद्र कुमार इनके पिता थे, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता था। और हमें बहुत सारे मैसेज आए हैं जिसके लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमें दिग्दर्शन गौर जी ने मैसेज किया है मेरठ से, और कविता गौर जी ने भी किया है, इसी तरीके से हमें बहुत मैसेज आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। और नितेश देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पुनाराम, कृष्णा देवांगन, स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, और इन्होंने जिन्होंने सही जवाब दिया, तनुजा तुलसी मस्कीन जी ने, उन्होंने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादर दिल्ली से किया है। वीना आशीष चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशुरिधान खुराना जी ने, और तनुजा जी ने भी हमें नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई। तो अब हम सुनते हैं इनका ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत है।

0: बात कहीं लव पे ना,
1: जी हाँ, दिल की बात कहीं लव पे ना आ जाए। ये खूबसूरत सा नगमा तेरी कसम फिल्म से है और अमित कुमार की आवाज का ये खूबसूरत नगमा आपने अभी सुना। और आपकी पढ़ाई यानी कि इनकी पढ़ाई जब पूरी हो गई थी तो कुमार गौरव ने अपने ही पिता के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया और ये फिल्म उस जमाने की ना ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमारे पास इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर मैसेजेस आ रहे हैं और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें फारूक जी ने आदाब भेजा है और कुन्नौर यूपी से उन्होंने हमें मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिरमानी वर्मा जी ने भाटा पारा से, अजीत भावस्कर ने जी, सुदर्शन मुखी ने, अनीता सिमरन शांति नगर सोनीपत से और इसी तरीके से धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं और उन्हें ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें तुलसी मस्कीन जी ने भी हमें दोबारा हमें मैसेज किया है और गाने के लिए उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत नगमे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरजिंदर सिंह शिंदा और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं जी कुमार गौरव की, जो अभिनेता बहुत ही खूबसूरत, उन्हें चॉकलेटी फेस और कहते हैं ना, उनकी जो मासूम मुस्कान थी युवाओं के दिल को छू जाती थी और रोमांटिक अंदाज और उनका हेयर स्टाइल युवाओं के बीच एक फैशन का ट्रेंड बन गया। और इसी तरीके से ट्रेंड बन जाती है कोई चीज़ें तो वो कोई कोई कलाकार होते हैं जो अपनी छाप दिलों में छोड़ जाते हैं कुछ इस तरह के नगमों के साथ।

किस किस ने अपने जमाने में ये गाना फिल्माया, गाया किसी के लिए, तो ये मैसेज करके मुझे जल्दी से बताइए। ip radio delhi@gmail.com ip radio delhi@gmail.com

ये गाना मेरा इतना फेवरेट है कि इस गाने को सुनते सुनते मैं भी थोड़ी बम्बल कर गई। खैर, और इतनी सारी चीजें हैं कि दिमाग में चलती हैं, आपसे बातें भी करनी हैं, कुछ नगमे भी सुनाने हैं, कुछ किस्से भी करने हैं। और जिन्होंने अभी भी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं हूं रैना आपके साथ, और अपना आपका कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम आज परिचित करा रहे हैं अभिनेता कुमार गौरव के फिल्मी सफर, उनका जीवन से जुड़े किस्से और खूबसूरत नगमों को। कुमार गौरव का बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जब 1993 में संजय दत्त मुश्किलों में फंसे थे, तब कुमार गौरव ने उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और कहा जाता है कि फिल्म लव स्टोरी की सफलता से पहले इनकी सगाई राजकुमार साहब की बेटी रीना कपूर के साथ हुई थी, मगर किसी कारणवश सगाई टूट गई और 1984 में अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से उनकी शादी हुई। और इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं, आपका प्यार अगर इस तरह से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें आया है वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी का मैसेज हमें आया है, धर्मेंद्र चिप्पा जी का आया है, और इस तरह से बहुत सारे मैसेज हमें किए जा रहे हैं। उषा मोहन जी का भी हमें मैसेज आया है, और फारूक अली खान जी का हमें मैसेज आया है, और फरहीन फरहान फारिया ताहिरा, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और इसी तरीके से उषा मोहन जी ने पीटीआई संसद मार्ग से हमें अनिल मोहन जी मैसेज कर रहे हैं, एक ही कलाकार के बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज करते हैं। हीरामणि वर्मा जी हमें भाटा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं, और इशक मोहम्मद जी ने हमें छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज किया है। खतीबा मेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस प्रोग्राम के साथ हमें जो उन्हें अच्छा लग रहा है, रोजी डे कास्ट्रो के उन्होंने जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी पर्ल और विलिस ने भी हमें मैसेज किया, उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम सुनने के लिए और हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनते हैं ये वाला अगला नगमा।

बिल्कुल, जिंदगी चार दिनों की है, इसे खूबसूरती से बिताइए ना, क्यों गिले शिकवे और रोना धोना करें, अच्छे से जिंदगी बिताने का ही तो नाम है। और अभी हमें इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने भी मैसेज किया है, राधा किशन, नवल किशोर और मधु, पूनम जोशी, शुभलता, प्रेम सागर का हमारे पास मैसेज आया है। और फिर उसी तरीके से हमें प्रकाश वर्मा जी ने भी मैसेज किया है, प्रिंस निखिल यशस्वी ने हमें मैसेज किया है। और उसी तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र से यवतमाल विदर्भ और संतोष खडसे और विनोद खडसे जी का मैसेज आया है। और फारूक अली खान जी ने भी हमें मैसेज किया है, संदेश भेजा है। और इसी तरीके से आप हमें प्यार भेजते रहें और हम आपका प्यार इसी तरीके से स्वीकार करते रहेंगे। पहली फिल्म जबरदस्त सफलता के बाद कुमार गौरव जी की कई फिल्में जैसे तेरी कसम और स्टार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, तब पिता राजन कुमार ने गौरव की करियर को वापस पटरी पर लाने के लिए 1986 में फिल्म नाम बनाई, जिसमें लीड रोल अभिनेता संजय दत्त को दिया, जिससे सफलता उन संजय दत्त की भी जो डूबता करियर था वो भी चमक गया। धीरे धीरे कुमार गौरव ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और मालदीव और खूबसूरत पर्यटन स्थलों पे ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस खोलकर सफलता हासिल की। और आज वो अपनी पत्नी नम्रता दत्त और दोनों बेटियों साचियो सिया के साथ एक बेहद शांत और सामान्य जीवन बिता रहे हैं। और जाते जाते ये वाला सॉन्ग तो हम सुनाकर रहेंगे भाई, हमें बेहद पसंद है। और यही कहूंगी कि भाई निराश कभी ना हुए, है ना, और हमारा कार्यक्रम तो सुनते ही रहते हैं, इसी तरीके से सुनते रहिए। और ये सुनते हैं ये वाला रकमा।

भाई मुझे भी मत भूलिएगा। और संदीप मक्कर जी ने ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल और शांतनी पिंगा और चौवक खोरब जालंधर से हमें मैसेज कर रहे हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं। संतोष खाड़ी से कमी मैसेज आया है और फिर अनिल मोहन जी ने मैसेज भेजा है कि फिल्म लव स्टोरी के लिए बहुत सारे गीत हैं जो उन्होंने सुना। हमने बहुत कोशिश की आप सभी के नामों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम कहेंगे बातें बहुत है मगर समय वही, बस याद रखिएगा आज के दौर में भरोसा बनाना बहुत मुश्किल है, तो कभी किसी का भरोसा ना तोड़े, उसी तरह ट्रैफिक रूल्स का को भी ना तोड़े। एक सभ्य और एक अच्छा नागरिक बने, जितनी किसी की मदद कर पाए करें, कुछ ऐसा करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कान और आपके दिल को मिले सच्चा सुकून। तो सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। बस आप तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ, तो रैना तंवर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब अगले कार्यक्रम का समय हुआ है, घड़ी के अनुसार 3 बजने को है, और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम वज्र माधुरी का।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे ब्रज में कोई भी आवे, चाहे वो भारत भूमि के काऊ भूभाग ते आयो भयो श्रद्धालु है या वो विदेशी कोई श्रद्धालु है, पर हमारी ब्रज संस्कृति को जो आकर्षण है ना वो राधे राधे के भाव में समाहित है। यानी कि जो राधे राधे की बात है वो हमारे ब्रज में अभिवादन को ना बहुत बड़ो आधार है।
1: अरे चंपा जी, आप भारत के संदर्भ में जब बात करेंगे तो पूरे भारत में अभिवादन के अनेकानेक शब्द हैं
0: जी।
1: अभिवादन दूसरे को स्वागत है
0: जी।
1: तो ये जो संवाद के और अभिवादन के अनेक रूप हैं, या को तो अगर हम देखें तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर सो वर्णन है
0: जी।
1: आपको याद हो तो हमने छठी या सातवीं क्लास में एक श्लोक पढ़ो, आपने पढ़ो होगा।
0: नृत्य गोपाल जी हमने तो पढ़ो है और याद भी है, पर बता आप देव।
1: हाँ हाँ, बहुत चतुराई थे आपने बात कर दी है। पर देखो हमने अभिवादन को एक श्लोक पढ़ो,
0: बताओ।
1: अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्
0: जी।
1: यानी जो अपने बड़ेन को, आगंतुकन को, दूसरेन को आगे सो चल के जो अभिवादन करे, वाकू चार चीज अपने आप ही प्रकृति सो मिल जाए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो ये हमारी संस्कृति को परिचायक है कि हमारे सामने कोई बड़ो मिल गयो तो हम बातें एक विनम्रता पूर्वक सिर झुका के हाथ जोड़ के राम राम कर लेंगे, श्याम श्याम कर लेंगे और नमस्कार कर लेंगे। अगलो वैसे ही कुशल क्षेम पूछेगो, वो कुशल क्षेम पूछेगो तो आप अपनी एक बात दो बात बताओगे तो आपको मन हल्को होएगो। बाकी परिणति ये होगी कि आपके मन को भी लगेगी कि चलो मैंने कितना भलो काम करो, अभिवादन करो, दूसरे ने मोते मेरी कुशल क्षेम जानी, मुकु हिम्मत बढ़ाई, कोई बात ऐसी हते या मुकु आगे बढ़वे की जो सीख है तो सीख की बात बताई है। तो जो ये अभिवादन की परंपरा है ना, या के इतने आयाम हैं कि जरूरत तो या बात की है कि हम या परंपरा की ओर अग्रसर हुए।
1: जी हाँ चंपा, देखो तनिक आप याद करो ना कि हम ब्रिज में जब चले
0: जी
1: तो हमारी बहन बेटी कोई घूंघटू मार के बहु निकल रही होगी।
0: हाँ।
1: तो बड़ी बूढ़ी के चरणन में तनिक हाथन कर दे,
0: पामन लगू
1: कह दे, और पामन लगवो कहते ही दूधन नहाओ पूतन फलो, तेरे भैया बहन बने रहे, तेरो सुहाग बनो रहे।

0: बच्चे खूब बड़े हो।
1: हाँ आशीर्वचनन की जो बौछार है ना नृत्य गोपाल जी, बस बा में तो सराबोर हो जाए अभिवादन करवे बारो। तो ये हमारी ब्रज धरा की ना एक अपने आप में इतनी समृद्ध विरासत है, इतनी समृद्ध संस्कृति है ना कि हर कोई ना यहाँ आवे है, यहाँ के नेह के वातावरण में रच बस जाए, पले बढ़े है। इच्छा यही हो कि मैं क्यों ना यहीं कोई वास कर लूं, यहीं कोई निवासी है जाऊं, यहीं पे ही बस जाऊं।
0: चंपा जी तनिक देखो, आशीर्वाद ऐसी चीज हो जाको वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जी में जब वर्णन कर रहे हो ना कि राम जहाँ जहाँ है के निकले वे सब संतन को बड़े को अभिवादन करके निकले
1: जी।
0: और आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कही कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा
1: जी।
0: बोले सुबह सुबह उठ के राम जी कहा करें, बोले माता पिता और गुरु के चरण वंदन करें और याते अनेक अनेक आशीष प्राप्त करें।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी बिल्कुल सही बात है।
0: चंपा जी तनिक देखो कि जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या ते चले ना
1: जी,
0: तो सीता जी ने तो सबसे पहले सरयू जी को गंगा जी को नदीन के काजे प्रणाम करयो।
1: तो नृत्य गोपाल जी इन परम पावनी नदियन को प्रणाम सम्मान करते हुए हम एक भक्ति रचना अपने कार्यक्रम में सुन ले।
0: जी हाँ श्रोताओं आओ सुने ये भक्ति रचना।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो जो ये अषाढ़ को महीना चल रहे हो ना, तो यहाँ में जो हमारे ब्रज को लोक जीवन है, चाहे तो अध्यात्म की बात करें या भक्ति भाव की करें या आम जनमानस की बात करें, तो अपने आप में ही है ना एक ऊर्जा को सो जो वातावरण है ना वो चारों ओर दिखाई पड़ रहे हो।
1: अब तनिक देखो ना चंपा, अगर आप अध्यात्म की बात करेंगे तो अभिवादन में राम राम जी कहें, राधे राधे कहें, जय श्री कृष्ण कहें, जोहारे कहें, भेंट कहें, यह सब में तो हमारे लोक की ही ऊर्जा दिखाई पड़े है।
0: और नृत्य गोपाल जी, अषाढ़ को महीना परम पुनीत महीना है और यहाँ में देखो 84 कोस की जो परिक्रमाएं उनको शुभारंभ हो गए हो, तो ये जो ध्वनि है अभिवादन की वो तो अपने आप में चारों ओर सुनाई पड़ रही है कि जो सुन रो वही सुन के गदगद हो रहे हो। तो नृत्य गोपाल जी फिर ऐसा करें कि काऊ चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, अवश्य ले चलो। जी हाँ श्रोता हो, आज आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है आषाढ़ मास में आध्यात्म और लोक चेतना का समागम, और यह भेंट वार्ता में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी, और उनसे बात कर रही है आपकी चंपा बहन।
0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सब श्रोता भैयन को राधे राधे। चंपा जी आपने बुलायो, जाके काजे आपको धन्यवाद।
0: सिकरवार जी देखो, हमारा तो जो भारत देश है तो वैसे तो वो अनेक ऋतुओं को और पर्वन को देश है, कितनी ऋतुआं में और हर ऋतु के ना अपने पर्व हैं, त्योहार हैं, और ब्रज में तो बड़ी विलक्षण परंपरा है, हम सब जाने ही हैं कि यहाँ 7 वार और 9 त्योहार हैं। तो यही क्रम में देखो, जो ये अषाढ़ को महीना चल रहे हो है ना, तो यहाँ में आध्यात्म को तो अपना स्वरूप है ही, हम देख रहे हैं कि जो लोकमानस है, जो जनमानस है ना, उनकी जो भावनाएं हैं वो भी अनेकानेक रूप में प्रस्फुटित हो रही हैं। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये अषाढ़ को महीना है ना, यहाँ में जो हमारे ब्रज की संस्कृति को और हमारे जो ब्रज को लोक जीवन है बाको कहा विशेष महत्व है।
2: चंपा जी, जे अषाढ़ मास के बारे में आपने पूछो है, बहुत बढ़िया सवाल है
0: जी।
2: जब ब्रज भूमि को जो सांस्कृतिक जीवन है, जे जो है जो ऋतु चक्र है और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं
0: जी,
2: हर महीना की वैसे तो अलग पहचान है, पर अषाढ़ मास की जो खास पहचान है वो जेठ की प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा की पहली फुहार आवे,
0: पावस ऋतु लग जाए,
2: पावस ऋतु लग जाए, वासे जो धरती की जो शीतलता प्रदान हुए वासे जुड़े हुए जो महीना है
0: जी।
2: जो सूखी धरती यानी जेठ की जो सूखी धरती है, वर्षा ना हुए तो बाके बाद पहली हरियाली की चादर उड़वे लग जाए,
0: प्रकृति है वो हरी भरी चूनर को या अषाढ़ के महीना में उड़वे लग जाए। सही कह रहे हो। और आप तो सिकरवार जी यह बात को ज्यादा न्यू जानोगे, क्योंकि आप तो देखो बिल्कुल ही जड़न ते जुड़े भये हो, किसानी जीवन ते आपने अपने जीवन की शुरुआत करी है, आपके पास तो यह चीज को अपनो ही एक विशद अनुभव है। हम देखे हैं सिकरवार जी के जो ये ऋतु परिवर्तन हुए और प्रकृति को जो हरियालोपन है ऊया मास में दिखाई दे, पर हम देखे कि धार्मिक दृष्टि से भी ये महीना है ना अषाढ़ को बड़ो महत्वपूर्ण महीना है।
2: अषाढ़ मास में ब्रज में खासकर जो लोग मनाए जाए वहाँ में गुरु पूर्णिमा जाए, मुड़िया पूनो कहे जाए
0: जी,
2: वो आवे गोवर्धन की परिक्रमा लगे, जाके अलावा जो है जामे सेवा दान और सामूहिक जो भक्ति को एक वातावरण बने, कजरी और जो मल्हार वर्षा के गीत गायबो हमारी जो गामनों जो महिलाएं वो शुरू करें।
0: तो सिकरवार जी देखो, सावन की मल्हारन की जो बात आप कर रहे हो, कजरी गीतन की आप कर रहे हो, वो जो सावन की आहट अषाढ़ मास में होवे लग जाए है, पर अभी देखो जैसे आपने यूं कही के अषाढ़ को महीना तो पर्वन को महीना है, तो हमारे श्रोता भैया बहनान को ऐसे पर्वन के बारे में बताओ जिनकी ब्रज में विशेष मान्यता है या अषाढ़ के महीना में।
2: एक तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकले जो जो हमारे रंगजी मंदिर से वृंदावन में बहुत बड़ी है, जहाँ देश विदेश से लोग आमे और रथ खींचे, बिल्कुल वैसे ही बात है।

0: है, जैसे पुरी में हुए।
1: जी, और एक जगन्नाथ जी को मंदिर हमारे वृंदावन में भी स्थित है ना, कौन
0: हाँ,
1: से घाट पे है?
0: केसी घाट पे है।
1: देखो शिकरवार जी, जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा की आप अषाढ़ में कह रहे हो, एक तरफ तो ये भक्ति भाव और श्रद्धा को पर्व है, पर हम दूसरी तरफ या पर्व में देखें कि प्रकृति को इतना बड़ा सानिध्य है कि भीगे भाई चना,
0: हाँ,
1: भीगे भाई मूंग, आम,
0: हाँ,
1: जामुन हैं, जो ये मौसमी और ऋतु फल हैं, उनकी ही भोग प्रसादी हमें ठाकुर जी को इष्ट को
0: हाँ,
1: निवेदित करी जाए है।
0: बिल्कुल, वही वही लगाया जाए, भोग लगाया जाए बाको।
1: हाँ, और शिकरवार जी, आप ये समागम की बात कह रहे हो, ये तो हमारे यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त ब्रज धरा में आ रहे हैं, बाकी बात रही, आप देखो कि जो हमारी ब्रज की लोक परंपरा है और जो हमारी ब्रज की लोक चेतना है ना, या आषाढ़ के महीना को वाय का रूप में आप देखें,
0: चेतना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे ईश्वर केवल मंदिर तक ही सीमित ना है, जाको एक संदेश दे जाए, जैसे मंदिर में जो जो हमारे
1: देवालयन
0: में के जो रथ खींचे हैं, वो भगवान जो है दर्शन देवी के काज खुद ही बाहर आ रहे हैं, और वहां में जो है सभी वर्ग के सभी तरीके के लोग जो है जाएं और रस्सी से भगवान खींचे, और ये बहुत बड़ा एक लोक उत्सव है, और ये भगवान से एक लोक को एक आत्मीय संबंध के रूप में देखा जाए एक तरीके से।
1: मतलब आपको कहवे को मतलब ये है शिकरवार जी के, जैसे भगवान जगन्नाथ अषाढ़ के महीना में जो रथ यात्रा निकलेगी, तो बाकी का जो कोई मतलब साधन की जरूरत ना है, के कोई बामे इंजन लगेगो, के
0: हाँ,
1: कोई गाड़ी लगेगी, वह खींचवे को जो लोक मानस की ऊर्जा है, उनकी जो उनको जो शारीरिक सौष्ठव है, वे ही रस्सी ने पकड़ के,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, तो जो ये लोकमानस है ब्रज जीवन को और संपूर्ण भारत को भी हम देखें, तो वहां में जो आत्मीयता को लगाव है इष्ट के प्रति, बाको जी तो जाग तो उदाहरण है ये रथ यात्रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वहां में तो जो है लकड़ी की रथ है, और वही हर बार जो है भक्त खींचे और अपने को
1: धन्य माने। तो शिकरवार जी, अब आप देखोगे ये जगन्नाथ रथ यात्रा की बात आषाढ़ मास में रही, हम देखें कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी है, जामे हमारे ब्रज में देव सोनी एकादशी भी कह में, और बाद हमारी जो भारतीय भी धार्मिक परंपराएं और जो हमारी ब्रज की मान्यता है, उनमें भी ये त्योहार अपने आप में ना विशिष्ट स्थान रखे, तो याको ब्रज में कहा रूप है?
0: बिल्कुल सही सवाल करे आपने चंपा जी, अषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी एकादशी माना जाए
1: जी,
0: यानी विष्णु भगवान बादन चिर निद्रा में सो जाए,
1: चार महीना के काजे।
0: तो आपने देखा होगा कि जिन चार महीने में शादी ब्याह आए हुए बैंड बाजे ना बजे, तो वो जो है वाको एक अलग महत्व, विष्णु भगवान यह माने जाए कि योग निद्रा में जो चले जाएं, तो जाए चातुर्मास प्रारंभ होता है जय दिना से
1: ब्रज में, याकी विशेष कहा मान्यता है,
0: याकी विशेष ये है कि ब्रज के जो मंदिर है उनमें विशेष पूजा हुए, भजन कीर्तन हुए, लोग व्रत रखें, और श्रद्धालु जा महीना में संयम से सात्विक से अपनो जो है भक्ति भाव में रहेंगे।
1: कि आपको कहने को मतलब है कि जो आस्था है, जो भक्ति को समागम है, बाकी जो धारा है वो या चातुर्मास में बह निकले, और जो बाकी परंपरागत शुरुआत है वो चातुर्मास में, यानी कि देव शैनी एकादशी से बाकी शुरुआत हो जावे
0: है,
1: तो हम देखे हैं शिकरवार जी के कितने सारे जो पर्यटन के काजे जो लोग आम है उनकी अपनी मान्यताएं, पर जो आस्था को और श्रद्धा को भाव लेके जो श्रद्धालु और भक्त ब्रज आम है, तो हम देखे हैं कि वे चार महीना के काजे ना ब्रजवास करें,
0: ब्रजवास वो माने जाए कि वो ब्रजवास करें, जैसे यमुना के किनारे
1: जी
0: भजन कर रहे हैं, और वो जो है साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर आपने देखा होगा कि आषाढ़ के बाद सावन महीना, ये जो महीना है चार महीना, यहाँ में बड़ी भागवत हो, बड़ी जो है वो रासलीला हो,
1: वो तो वो एक उनकी आस्था हो गई, पर हम देखे हैं अपनी शारीरिक क्रियाएं उनके काजे भी, ये बड़ा पावन महीना है, क्योंकि बहुत से लोग एक समय ही अन्न ग्रहण ब्रज में रह के करें, और उनकी जो खान पान की दिनचर्या है, उनकी जो खान पान की शैली है, वहां में इतने बदलाव देखवे के काजे मिले हैं के हर कोई ब्रज धरा में जाए के और आए के अपने आप को ना बड़ो धन्य समझे,
0: धन्य समझे, बिल्कुल सही बात कही आप।
1: तो शिकरवार जी, आपने भी कभी कोई ऐसे तरीका को
0: ना, मैं तो कोई साधना ना करी, पर मैं जान दू के चैत्र मास को हमारे ब्रज में महात्म है, और लोग जो है अपने कल्याण के काजे अपने जो है जा महीना में पूजा पाठ करें, और बाहर से हुआ में जा चार महीना में श्रद्धा और भक्ति को वातावरण बने, और चारों तरफ जो है हम देखें,
1: तो हम देखें ऐसे करवार जी, जैसे हमारे ब्रज में तो देखो अब ये अषाढ़ को महीना विशेष रूप में यूं जानो जाए के यहाँ पे गुरु पूर्णिमा को पर्व आवे, जाको व्यास पूर्णिमा कह में है, तो आप देखो के हमारे ब्रज में कहावत है गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। तो जो इतनी विलक्षण बात गुरु के काजे, गुरु शिष्य की परंपरा में हमारे ब्रज में ही प्रचलित है मान्यता, पौराणिक काल से ही प्राचीन मान्यता में भी ये बात प्रचलित है। तो हम देखे हैं कि जो ये गुरु पूर्णिमा को अवसर है, तो यादना हमें ये बताओ हमारे सब श्रोता भैया बहनान को कि यह अवसर पे जो आम जनमानस है ब्रज को, जो लोकमानस है, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, वो कहाँ रूप में दिखाई दे।
0: हाँ जी, आपने चंपा जी बहुत अच्छा सवाल करे हो। ये जो है आषाढ़ मास के जो समापन है, यानी वो सावन महीना शुरू हुए, वो जो है पूर्णमासी हमारे यहाँ पे गुरु पूर्णिमा कही जाए, या आषाढ़ मास के जो समापन पे और जो सावन महीना लगे वह गुरु पूर्णिमा कहा जाए। तो वह दिन जो है खास महत्व ये है कि वो गुरु पूर्णिमा के रूप में जितने भी हमारे देवालय हैं वहाँ पे भक्त जाएं, अपने गुरु की पूजा करें। और वैसे भी हमारे तो पुराणों में माने गए कि भगवान से पहले गुरु है। हाँ। तो ब्रज के हर एक जगह पे एक तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और सबसे बड़ा जो आयोजन हुए ब्रज में वो हुए गुरु पूर्णिमा पे गोवर्धन में, जय मुड़िया मेला का है,
1: मुड़िया मेला गए। हाँ।
0: और वहां में जो है परिक्रमा लगे 5 दिना की, जो
1: सप्तकोशी परिक्रमा है, कोई वो तो अपनी अपनी आस्था है, शिकरवार जी कोई परिक्रमा दे रहे, कोई दंडौती दे रहे है ना, तो ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है। और जैसे हमारी जितनी शारीरिक ऊर्जा है ना, पर ब्रज में आके ना हर कोई इन मान्यतान को निर्वाह तन मन धनते करे है।
0: बिल्कुल।
1: तो शिकरवार जी देखो बहुत अच्छी चर्चा आपके संग चल रही है। हम देखे हैं कि जो ये आषाढ़ को महीना है ना, यहाँ में कितने सारे पर्व हैं, उन पर्वन की अनेकानेक परंपरा हैं। तो एक जो ब्रज धरा में भाव हमें देखने को मिले, वहाँ पे सबसे महती परंपरा या बात की है कि वहाँ पे सामाजिक समरसता इतनी है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है बाको भी हम जितनी बात करें।
0: बिल्कुल।
1: तो या बारे में हमारे श्रोता भैया बहनान को कछु बताओ।
0: देखो जी, गुरु पूर्णिमा पे जो श्रद्धालु गुरु की पूजा करें, चरण वंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, मंदिर और आश्रम में व्यास पूजा की जो एक कहावत है,
1: परंपरा
0: है, जो व्यास पूजा की है
1: जी,
0: जहाँ में भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद वितरण ये सब हुए, और ये आध्यात्मिक साधना को एक संकल्प लेके जाएं। और ये पर्व एक तरीका से कहा जाए कि ज्ञान विनम्रता और कृतज्ञता की भावनाएं मजबूत करें,
1: मतलब
0: अपने गुरु के प्रति,
1: अपने गुरु के प्रति, और सबसे बड़ी जो बात है अपने इष्ट के प्रति जो समर्पित भाव है वो या में हमारे ब्रज धरा में या वक्त देखने को मिले है। हम देखे हैं कि जो यह साढ़ को महीना है तो ब्रज के लोकगीत हैं, सावन के महीना की मल्हार है। तो हमारा जो लोक साहित्य है ना, वामे भी जो आषाढ़ मास को चित्रण है वो अनेक अनेक रूप में मिले है। तो या के बारे में और चलते चलते,
0: बिल्कुल आपने सही सवाल करे हो। ये जो है ऐसा है कि जो आषाढ़ महीना में जो जैसे ही वर्षा की फुहार पहली पड़े
1: जी,
0: जेठ के महीना के बाद में, तो एक नया वातावरण, एक परिवेश ऐसा है जाए,
1: विकसित है जाए
0: कि बामे एक नई तरंग पैदा हुई। और वही से जो है एक तरीका से जो हमारा जो माने जाए कि काले जैसे मेघ घुमड़ घुमड़
1: आ जाए, हाँ।
0: बिजली चमके, मोर नृत्य करें,
1: पपिया
0: पीहू पीहू करे, कोयल की ध्वनि जो है हमारे कानन तक आवे, वर्षा की फुहार के बीच में, तो फिर स्वाभाविक है जो हमारी महिला है ब्रज की वो लोकगीत गावे, और लोकगीत होते हैं वो मल्हार कही जाए।
1: हाँ, और शिकरवार जी लोकगीत तो हमारी ब्रज की महिला गाएंगी, क्योंकि ऐसी मान्यता तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि ब्रज में ऐसी कोई नारी ना होगी जहाँ पे एक रत्ती सोनो और एक लोकगीत ना या तो होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो शिकरवार जी आज आप हमारी ब्रज माधुरी कार्यक्रम में पधारे और आपने आषाढ़ मास की महत्ता पे, हमारे अध्यात्म और लोक चेतना पे इतनी विस्तार से चर्चा हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे करी। तो याके काजे हम आपको बहुत बहुत आभार करे हैं और आपते निवेदन करे हैं कि आप ऐसे ही विविध विषय पे चर्चा करवे के काजे हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में समय समय पे आते रहे करो।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी, आपने बुलाया ब्रज माधुरी में, सब भैया को राधे राधे।
2: जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे ये भेंट वार्ता जाको विषय हो आषाढ़ मास में आध्यात्म और लोक चेतना का समागम। विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित है चंद्र प्रताप सिंह शिकरवार, और उनसे बात कर रहे हैं आपकी चंपा बहन।
1: तो नृत्य गोपाल जी।
2: जी चंपा जी,
1: देखो आषाढ़ के परम पावन महीना में जो आध्यात्मिक बात है बाकी वानगी या वक्त ब्रज में देखते ही बन रही है, और जो ब्रज को लोक जीवन है ना वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सब बढ़ चढ़ के बा में अपनी सहभागिता दर्ज कराए रही है। और वैसे भी हम देखे हैं कि जो ये आषाढ़ को महीना है ना यहाँ हमारे जो ब्रज की संस्कृति है और जो बाकी संग लोक को जुड़ाव है ना बाकी बात ही और है।
2: चंपा देखो

0: दिना गाजे बाजे ढोल तासेन के संग जो ब्याह होंगे, बाके बाद 4 महीना के काज विराम लग जाएगो। तो हम तो आपते यही कहें, कहीं नौ तो आयो हो तो भूल मत जाइयो, फिर 4 महीना के बाद ही आपको लड़ुआ खाएवे को मिलेंगे।
1: चंपा, झोला लटका के तो आप निकल लेगी, हमें पतो है।
0: अरे नृत्य गोपाल जी, क्योंकि कहूँ जाएंगे तो पत्थर पर रोसा तो रख के लाएंगे ना झोला में।
1: हाँ, एक साड़ी मिल जाएगी, कोई सूट वूट मिल जाएगा।
0: हाँ, साड़ी जरूर मिलेगी नृत्य गोपाल जी। और बाकी बात वो हम आपको देखें कि हमारे जो ब्रज लोग जीवन में है ना, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, दंडौती परिक्रमा है, उमड़िया पूनों पर लगवे बारी है। ब्रज लोग जीवन में बाकी काज भी बड़ी तैयारी सबकी चल रही है। सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि भैया तू चलेगो, तू चलेगो, कौन कौन चलेगो, कब चलेंगे, या की भी बातचीत सबके घर घर में चल रही है।
1: जी हाँ चंपा, देखो परिक्रमा के काजे सामान्य परिक्रमा तो सब ही दें, पर ब्रजवासी जो दूध की परिक्रमा, दूध की धार जाते कहें, या जो दंडौती परिक्रमा करें, वाको आनंद कछु और होए है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, उत जयमत गोवर्धन के संग इत राधा सो प्रीत लगाई, इत गोपिन सो कहत जिमावो, इत गोपिन सो कहत जिमावो, उत आपुन जयमत मन लाई, आगे धरे छहो रस व्यंजन, चहु दिसते अति अरग बढ़ाई, अंबर चढ़े देवगण देखत, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाही, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाही।

प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप गिरिराज जी को समर्पित ये भक्ति रचना सुन रहे हते। तो प्यारे भैया बहनाओं, असार मास के जो ये उत्सव हैं ब्रज लोक में, इनकी जो महत्ता है वाय देखवे के काजे, आप अपने परिजनन के संग, अपने इष्ट मित्रन के संग ब्रज धरा में पधारो। ब्रज धरा आपको बुलाए रही है। प्यारे भैया बहनाओं, आप जानो ही हो, बात तो करवे के काजे बहुत सारी हैं, पर समय की अपनी सीमा है। इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा भी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं, बोलती कहानियां।
1: बोलती कहानियां क्रम में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी, लेखक का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल सूरी।
2: प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफा उबाली गई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वे किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी।

0: क्या तुम चाय पी चुके?
1: हाँ, पी चुका। बहुत अच्छी बनी थी।
0: पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए?
1: दूध और शक्कर तो कई दिनों से नहीं मिली। मुझे आजकल सादी चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए। और यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है। ये तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की इजाद है।
0: ना जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है। मुझे जगा क्यों नहीं लिया? पैसे तो रखे थे।
2: महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। सूर्योदय से आधी रात तक ये साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। कदाचित अब उसे ये ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार कोई प्रतिभा नहीं है और ये भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। अगर कोई संतोष था तो ये कि उनकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी दो कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी।
0: जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया है कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो?
1: अरे भाई, लिखने में कम से कम ये संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ।
0: अरे, इतने पढ़े लिखे आदमी हवा खाने जाते हैं तो क्या वो अपने समय का नाश करते हैं?
1: देखो सुमित्रा, इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मिल का मजूर हूँ। तुमने किसी मजूर को हवा खाते देखा है?
0: नहीं।
1: जिन्हें भोजन की कमी नहीं उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं चाहते। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है।
0: निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, मेरा दिल कहता है तुम जैसे तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी।
1: अच्छा सुमित्रा, यहाँ के एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है, उन्होंने मुझको भी निमंत्रित किया है।
0: अरे वाह, ये तो प्रसन्नता की बात है। इस बहाने कुछ महानुभावों से परिचय हो जाएगा। परिचय से कहीं ना कहीं लाभ मिलता ही है।
1: हाँ, मेरा मन भी आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। पता नहीं राजा साहब किन शब्दों में मेरा स्वागत करेंगे और किन शब्दों में मुझे धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और किन महानुभावों से परिचय होगा। लेकिन सुमित्रा, मुश्किल कपड़ों की है। मुद्दत गुजरी जब मैंने अचकन बनवाई थी, उसकी दशा भी मेरे जैसे जीर्ण हो चुकी है। जैसे जरा सी सर्दी या गर्मी से मुझे जुकाम या सिर दर्द हो जाता है ना, उसी तरह अचकन भी नाजुक मिजाज है। उसे निकालो और झाड़ पोछ कर रखो।
0: मैं तो कहती हूँ तुमने व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार किया।
1: क्यों?
0: लिख देते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है।
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
0: इन फटे हालों में जाना और भी बुरा है।
1: सुमित्रा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है ना, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार भी नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूं। लेखक लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है।
0: तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो।
1: कैसी बात कर रही हो?
0: मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी।
1: अरे नहीं,
0: सरलता जरूर अच्छी चीज है पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए।
1: देखो सुमित्रा, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं?
0: मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों।
1: अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं, प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक भूख होती है। तुम पूछोगी कि ये भूख क्यों होती है?
0: जरूर पूछूंगी।
1: हाँ, तो इसलिए कि ये हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के छोटे से अंश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश के पूर्व के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता सुमित्रा।
0: अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिनसे लिया उसे देने की नौबत ही नहीं आई। मुझे अब और कोई उपाय नहीं सूझता।
1: हाँ, दो एक पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएं। और अगर कल उपवास भी करना पड़े तो क्या चिंता, भाई हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं, हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है, फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं है सुमित्रा।
0: क्यों इस तरह की बेढंगी बात करते हो? लो, मैं तुमसे बात नहीं करती।
1: क्यों सुमित्रा, मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूं जो अर्थी गाजे बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता।
0: चुप रहो,
1: तुम ही कहो। मैं जो कुछ करता हूं इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं? सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूं।
0: मैं भी तो यही कहती हूँ कि लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं, तुम्हारे लिए ये सब वर्जित है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत ही नहीं आई। होली के दिन भी तुमने छुट्टी नहीं मनाई। बीमार भी होते हो तो लिखने की फिक्र सर पर सवार रहती है।
1: हाँ सुमित्रा, सोचो तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था।
0: तुम अपना कर्तव्य पूरा किए जाओ, अगर दुनिया नहीं कद्र करती तो ना करे। उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, हमें इससे प्रयोजन नहीं।
1: हाँ, मेरा ऐसा मित्र कौन है, परिचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही अच्छा है कि लोग मुझे

0: बदनीयत नहीं समझते।
1: अच्छी बात है।
0: मेरी कुछ अधिक मदद न कर सकें, पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वो अवसर तो आया है कि एक राजा ने मेरा सम्मान किया।
1: मैं भी तो यही समझाती हूँ, कभी तो हमारे दिन बहुरेंगे।
0: नहीं, मैं अब रात को नहीं जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा।
1: इसी वक्त?
0: जिसे राजा महाराजा आमंत्रित करे वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है, वो इस नगर के ही नहीं भारत के विख्यात रईसों में है। अगर अब भी कोई नीचा समझे तो खुद नीचा है।
2: संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहनकर घर से निकलते हैं। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला न हो।
0: आज राजा साहब का निमंत्रण मिला है, तो क्यों न रास्ते में कुछ लोगों से मिल लिया जाए। उन्हें भी तो पता चले कि हम भी छोटे मोटे आदमी नहीं हैं।
2: प्रवीण जी अब तक जब घर से निकलते थे तो दुकानों से आंखें चुराते थे, पर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वो उनके तकाजों का जवाब देने को तैयार हैं। तब वो हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते हैं। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम न चुका सके थे।
3: ओ प्रवीण जी, महाशय, महाशय इधर भी।
0: जी जी।
3: अभी तक छतरी के पैसे नहीं आए, समझे? ऐसे 150 ग्राहक मिल गए ना तो दिवाला हो जाएंगे हम। अरे बहुत दिन हो गए, अब तो दे दो।
0: हाफिज मियां, मैं भूला नहीं हूं अभी तक। इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर शिनासों की कमी नहीं। दो चार आदमी घेरे ही रहते। इस वक्त राजा साहब।
3: राजा?
0: अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं।
3: हाँ,
0: उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। अरे दावत है, रोज ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है।
3: उनके यहाँ दावत है?
0: हाँ।
3: अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं?
0: जी जी।
3: हाँ ठीक है ठीक है। आप जैसे बकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा भला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस जमाने के वक्ता हैं, अगर कोई मौका हाथ आ जाए ना तो इस गरीब को मत भूल जाइएगा है। आप राजा साहब की अगर निगाह इधर हो जाए तो बस फिर क्या कहना है। एक पूरा बिसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है।
0: 2.5-3 लाख?
3: हाँ।
0: अम्मा क्या कह रहे मियाँ, आप तो उन्हें अनाप शनाप कुछ भी बोल देते।
3: नहीं नहीं नहीं यार।
0: सुनिए, उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं।
3: अच्छा?
0: हाँ, एक साहब का अंदाजा तो 20 लाख का है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है।
3: ये दुकान तो आप ही की है जनाब।
0: अच्छा?
3: बस इतनी सी अरज है। ए मुरादी, बात सुन, ये जरा नुक्कड़ वाले से 2 पैसे के अच्छे से बढ़िया से पान बनवा ले जनाब के लिए। जा जा जा जा। आइए आइए, आप जरा 2 मिनट बैठिए तो सही।
0: जी जी।
3: दुकान में कोई चीज पसंद हो तो दिखाओ।
0: जी
4: जी हुजूर, पान ले आया हुजूर।
3: ले आए? बहुत खूब बहुत खूब। लीजिए लीजिए, नौश फरमाए। पान नौश फरमाए।
0: जी जी जी।
3: अरे बाजार के बेहतरीन पान है।
0: क्या बात है,
3: आपसे क्या, आपसे तो घर का वास्ता हो गया है।
0: बहुत स्वादिष्ट है।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
0: देखिए इस वक्त तो मुझे माफ करिए।
3: अरे नहीं नहीं, आप बोलिए ना, मैं दिखाता हूँ जो जो चीज पसंद है बताए।
0: अरे वहाँ देर हो जाएगी जाने में, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
3: चलिए ठीक है, हमारा सलाम कहिएगा।
0: जी जी जी जी जी।
2: से उठकर प्रवीण एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुकता है। मनोहर दास नाम था इसका। प्रवीण को खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में ही नहीं है, समझा रुपए देने आए हैं।
4: भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिए हैं? रुका कई बार भेजा मगर प्यादे को आपके घर का पता ही नहीं चला। मुनीम जी, अरे ए मुनीम जी, अरे खाते में जरा देखो आपका आपके नाम के क्या है।
3: जी हुजूर। लीजिए।
2: प्रवीण के प्राण तकाजों से सूखे जाते थे, पर आज वो इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया हो, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता।

0: जरा राजा साहब के यहां से लौट आऊं तो निश्चित होकर बैठू। इस समय थोड़ा जल्दी में आऊं।
1: पां तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं। कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए, और अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के खजानची से कहिएगा, अब पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा है।
0: अच्छा अच्छा, कह दूंगा।
1: अब तो सफाई हो जाए, हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना हो।
0: अरे मनोहर दास जी, अब मैं चलता हूँ।
1: अरे भाई पान तो खाते जाइए।
0: इस समय पान तो रहने दो भाई, बहुत देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म बनता है ना कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करे, अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं।
2: प्रवीण राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचते हैं। दिए जल चुके हैं, अमीरों और रईसों की मोटरें चारों ओर खड़ी हुई हैं। वर्दीपोष दरबान द्वार पर खड़े हैं। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। प्रवीण जी को देखकर वे जरा झिझकते हैं।
3: आइए इस तरफ, तशरीफ लाएं। जी जी, तशरीफ लाएं आप। आइए आइए, सुनिए। अरे रुकिए।
0: अरे जी जी जी, कहिए कहिए।
3: आपके पास निमंत्रण पत्र है? है?
2: प्रवीण की जेब में निमंत्रण पत्र था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों निमंत्रण पत्र मांगा जाए, औरों से भी क्यों ना पूछा जाए।
3: शकल क्या देख रहे हैं, बताइए है निमंत्रण पत्र?
0: जी नहीं, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। अगर आप अन्य महाशयों से निमंत्रण पत्र मांगते तो मैं भी दिखा सकता था, वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान की बात समझता हूं। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से ही लौट गए, चलता हूं।
3: नहीं नहीं नहीं महाशय, अरे रुकिए रुकिए, आइए आइए, आप अंदर आइए, चलिए चलिए चलिए। मुझे आपसे परिचय ना था, बेअदबी माफ कीजिए, आप जैसे महानुभावों से ही तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वो वाणी प्रदान की है कि क्या कहना।
0: धन्यवाद महोदय, सुनिए आगे से ध्यान रखिएगा।
3: जी जी जी।
2: प्रवीण अंदर पहुंचते हैं। 12 दरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है, हौज में संगमरमर की परी, परी के सर पर फव्वारा, फव्वारे की फुहारे रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम हो रही हैं मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई हैं, मेजों पर सफेद मेजपोश, ऊपर सुंदर गुल।

0: प्रणाम राजा साहब।
1: आइए आइए प्रवीण जी, आपकी पत्रिका में आपका लेख देखकर दिल खुश हो गया।
0: जी शुक्रिया।
1: अरे मैं तो चकित हो गया, मालूम ही ना था कि इस नगर में आपके जैसे रत्न भी छिपे हुए हैं।
2: क्या करते हैं?
1: सज्जनों, आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा, ये आप ही हैं। क्या ओज है, क्या भाव है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार है, क्या प्रवाह है कि वाह वाह, मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है।
3: एक सज्जन जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण को ऐसी निगाह से देखते हैं मानो वो चिड़ियाघर का कोई जीव हो।
4: लेखक महोदय
0: जी,
4: आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है? बाइडन, शैली, कीट्स आदि?
0: हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा है।
4: देखा है? गुड गुड गुड गुड। तो आप इन महाकवियों में से किसी की रचनाओं का अनुवाद कर दें।
0: अच्छा
4: अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आप हिंदी भाषा की अमर सेवा करेंगे।
0: देखिए, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे।
4: हैं?
0: जी हाँ। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। समझे?
4: नहीं, कुछ नहीं समझे। क्या बात करते हैं आप?
0: मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उतरी आंखों से।
4: ऐसा है, अपना विचार आप अपने पास रखें, समझे?
1: आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी, आपके लेख अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं।
3: इसका आशय ये था कि अब आप ना बहकिए, परांजपे के सामने प्रवीण को नीचा देखना पड़ता है। विदेशी वेशभूषा और भाषा का ये भक्त इतना सम्मान पाए, ये उनके लिए असह्य था। पर करते क्या, तभी उसी वेश के एक दूसरे सज्जन आते हैं। राजा साहब तपाक से उनका अभिवादन करते हैं।
1: आइए डॉक्टर, कैसे मिजाज है?
5: अरे साहब, आपके होते हुए तो अपने मिजाज ठीक ही रहेंगे। आपकी तारीफ।
1: आप महाशय प्रवीण हैं, आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं।
5: अच्छा, तो आप कवि हैं?
0: जी, लेखक भी।
3: ये वाक्य हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता है। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते हैं। उसका सीधा सादा आशय ये है कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहां तुम्हारा क्या प्रयोजन? तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में बेधड़क आओ? प्रवीण मन ही मन खुद से बोलता है,
0: मैंने तो निमंत्रण पाकर अपने को धन्य माना था, पर यहां आकर जितना अपमान हो रहा है वो असह्य है। प्रवीण, तुम जैसे सम्मान के लोभियों का ये दंड है। अब तो आंखें खुली तुम्हारी, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस स्वार्थमय संसार में किसी के काम नहीं आ सकते, न उन्हें तुम्हारे द्वारा कुछ पाने की आशा है। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं।
1: क्या हुआ प्रवीण?
3: सहसा लोगों में हलचल मच जाती है। आज के मुख्य अतिथि का आगमन होता है। राजा साहब लपक कर उनसे हाथ मिलाते हैं।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका। प्रवीण जी, आप अपनी कविता तो लिखे लाए होंगे।
4: मैंने कोई कविता नहीं लिखी।
1: सच? तब तो आपने गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, अब तो कोई चीज लिख डालो, दो ही चार पंक्तियां हो जाएं, बस। ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है।
4: मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता।
1: मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय करवाया।
4: जी बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ।
1: अरे भाई, किसी प्राचीन कवि की कोई रचना सुना दीजिए।
4: क्षमा कीजिएगा राजा साहब, मैं किसी और कवि की कोई रचना नहीं सुना सकता। चलता हूं, प्रणाम।
3: राजा जी के यहां से निकलकर प्रवीण घर पहुंचते हैं। उनका चेहरा खिला हुआ है।
2: इतनी जल्दी कैसे आ गए?
4: सुमित्रा, मेरी वहां कोई जरूरत ही नहीं थी।
2: चलो, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा।
4: हाँ, सम्मान तो मुझे इतना मिला कि जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी।
2: खुश तो बहुत हो।
4: आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं दीपक हूं और जलने के लिए बना हूं। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने नहीं दिया। मेरी ये कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। मैं आज ये तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है, पूरी तपस्या।

0: बोलती कहानियां क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी लेखक का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरण और निर्देशन काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे उमेश दीक्षित, नितिन भसीन, संजय वर्मा, हर्ष ढिंगरा और जस किरण चोपड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम बोलती कहानियां। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
3: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल।

बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब हम थोड़ी सी सूचनाएं आपको बता दें कि अगले कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी और दैनिक कार्यक्रम 5:30 पर खेल जगत का खेल खिलाड़ी। और अब हमारा समय हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: 印度的李广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में।

0: जहां हम आपको देते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल खबरें। मैं हूं अमीषा पटेल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी
1: सिमरन सारवान।
0: नमस्कार सिमरन।
1: जी नमस्कार अमीषा।
0: तो सिमरन, आज हमारे खेल के पिटारे में हमारे श्रोताओं के लिए कौन कौन सी खबरें हैं?
1: जी आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, जहां पर स्पेन के खिलाफ खेले गए बेल्जियम के खिलाफ स्पेन और बेल्जियम के बीच में खेले गए मैच पर बात करेंगे। बात करेंगे खेले जाने वाले नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड के बीच होने वाले मैच को भी प्रीव्यू करेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट को भी लेते चलेंगे, आर्चरी भी पीछे नहीं छूटेगा। साथ ही साथ ISSF शॉटगन पर भी बात होगी, एशियन एथलेटिक्स को भी हम साथ साथ लेते चलेंगे।
0: जी तो अब हम शुरू करते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध फीफा विश्व कप 2026 से।
1: फीफा विश्व कप 2026 अब अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। शुक्रवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ स्पेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस विश्व कप में खिताब का सबसे मजबूत दावेदार है। मुकाबले की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार बेल्जियम के गोल पर दबाव बनाया। इसी का नतीजा 30वें मिनट में देखने को मिला, जब मिडफील्डर फैबियन रुइज ने शानदार गोल करके स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि बेल्जियम ने हार नहीं मानी। पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले 41वें मिनट में चार्ल्स जी कैटेलेरे ने बेहतरीन फिनिश के साथ गोल दागा और स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। इसके बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच तेज रफ्तार और रोमांचक फुटबॉल देखने को मिली। दोनों पक्षों ने कई मौके बनाए लेकिन गोल नहीं कर सके और मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर दिखाई दे रहा था। लेकिन मैच का सबसे बड़ा मोड़ 71वें मिनट में आया, जब बेल्जियम के अनुभवी गोलकीपर थिबाउट कोर्टुआ चोट के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनकी जगह सेन लामेंस को उतारा गया। मैच के 88वें मिनट में लामेंस गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सके और स्पेन के मिकेल मेरिनो ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस निर्णायक गोल ने स्पेन को 2-1 की यादगार जीत दिला दी। इस जीत के साथ स्पेन ने लगातार 36वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बिना हार के पूरा किया। अब वो इटली के लगातार 37 मैच तक अजय रहने के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हैं। स्पेन का शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में उसकी बेहतरीन लय और मजबूत टीम संयोजन को भी दर्शाता है। अब टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं और आक्रामक फुटबॉल खेल रही हैं। ऐसे में ये मुकाबला विश्व कप 2026 के सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मैचों में से एक माना जा रहा है। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें अब इसी सेमीफाइनल पर टिकी होंगी, जहां एक ओर स्पेन अपनी अजय लय को बरकरार रखना चाहेगा तो दूसरी ओर फ्रांस फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पेन अपनी शानदार जीत की लय जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना पाता है या फ्रांस उसकी राह रोकने में सफल रहता है।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आज खेले जाएंगे दो बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12 जुलाई को रात 2:30 बजे नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा। कागजों पर इंग्लैंड मजबूत नजर आती है, लेकिन नॉर्वे ने इस वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया था। उस मैच में अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल किए, जबकि गोलकीपर ओर्जन नेलैंड ने शानदार बचाव कर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। नॉर्वे की ताकत उसका संतुलित खेल है। मार्टिन ओडेगार्ड मिडफील्ड को संभालते हैं, अलेक्जेंडर सोरलोथ और हालैंड आक्रमण में लगातार खतरा बनते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर बेंच से आने वाले खिलाड़ी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड ने मेजबान मेक्सिको को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। कप्तान हैरी केन और युवा स्टार जूड बेलिंगम बेहतरीन फॉर्म में है। केन अब तक 6 गोल और बेलिंगम अब तक 4 गोल कर चुके हैं। इंग्लैंड की उम्मीदें एक बार फिर इन दोनों पर होंगी। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच खेले गए 12 मुकाबलों में से इंग्लैंड ने 7 जीते हैं, जबकि नॉर्वे को सिर्फ 2 जीत मिली है। हालांकि वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। वहीं दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल सुबह 6:30 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना को इस मुकाबले का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में टीम को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कई मुकाबलों में पीछे रहने के बावजूद लियोनेल मेसी की टीम ने शानदार वापसी की है। यही जज्बा अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कोच लियोनेल स्कलोनी की टीम में मेसी, एंजो फर्नांडिस और एलेक्स मैक एलिस्टर जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरी ओर

0: स्विट्जरलैंड की पहचान उनका मजबूत डिफेंस है। टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 गोल खा चुकी है। कप्तान ग्रेनिट ज़ाका मिडफील्ड से खेल को नियंत्रित करते हैं और टीम बेहद अनुशासित फुटबॉल खेलती है। अगर स्विट्जरलैंड को उलटफेर करना है तो उन्हें मजबूत डिफेंस और शायद पेनल्टी शूटआउट तक मुकाबला ले जाना होगा। हेड टू हेड की बात करें तो यह रिकॉर्ड भी अर्जेंटीना के पक्ष में है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 7 मुकाबलों में अर्जेंटीना ने 5 जीते हैं जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। स्विट्जरलैंड आज तक अर्जेंटीना को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में नहीं हरा पाया है। और अगर वहीं गोल्डन बूट की रेस की बात करें तो फ्रांस के केलिन एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8-8 गोल के साथ सबसे आगे हैं। नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड भी 7 गोल और इंग्लैंड के हैरी केन भी 6 गोल के साथ इस दौड़ में बने हुए हैं। ऐसे में आज के मुकाबले गोल्डन बूट की रेस को भी और दिलचस्प बना सकते हैं। ऐसे में आज के दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना अपनी दावेदारी मजबूत करते हैं या फिर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड एक और बड़ा उलटफेर कर वर्ल्ड कप को नया मोड़ दे सकते हैं।
1: जी, विंबलडन पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं, साथ ही साथ क्रिकेट पर भी भारत की खासकर नजरें टिकी रहती हैं। तो बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट की, जिसमें T20 मैच आज होने वाला है। तो सुनते हैं इस पर ये रिपोर्ट।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का 5वां और अंतिम मुकाबला आज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, जबकि अगले 3 मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने आज सिर्फ सम्मान बचाने ही नहीं बल्कि जीत के साथ दौरे का समापन करने की चुनौती भी होगी। दिलचस्प बात यह है कि 8 मार्च 2026 को T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं जीत सका है। टीम लगातार 6 मैचों से जीत का इंतजार कर रही है। यदि भारत आज भी हारता है तो यह पहली बार होगा जब टीम 3 या उससे अधिक मैचों की T20 श्रृंखला गवाएगी। वहीं इंग्लैंड के पास जीत के साथ भारत को पीछे छोड़कर T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय जीत की तलाश में है। हालांकि उन्होंने मौजूदा श्रृंखला में 2 अर्धशतक लगाए हैं और पिछले मुकाबले में 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली है। भारत को युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अब तक उन्होंने 42 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 34 T20 मुकाबलों में भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 15 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। हालांकि इंग्लैंड की सरजमी पर मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा है। रोज बाउल स्टेडियम की बात करें, यहां की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान हो जाती है। इस मैदान पर T20 में पहली पारी का औसत स्कोर 166 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत 138 रन रहता है। यहां का सर्वोच्च T20 स्कोर 248 रन है, जो इंग्लैंड के नाम दर्ज है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या भारत जीत के साथ दौरे का अंत करेगा या फिर इंग्लैंड अपनी शानदार रन बरकरार रखते हुए क्लीन स्वीप की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक मुकाबले का इंतजार है।
1: जी, साथ ही साथ विमेंस क्रिकेट के भी मैच पर सबका रोमांच बना हुआ है। फिलहाल मैच चल रहा है इंडिया बनाम इंग्लैंड का, जो कि ऐतिहासिक लॉर्ड्स में हो रहा है। फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन स्कोर आपको बता दें 137 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं और 5 विकेट लेने वाले कौन है खिलाड़ी अमीशा?
0: जी बिल्कुल सिमरन, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जो 5 विकेट हैं इंग्लैंड के, वो जो हमारे भारतीय बॉलर्स जिन्होंने लिए हैं वो हैं सैली सदघड़े जिन्होंने 1 विकेट लिया है, क्रांति गौर जिन्होंने 3 विकेट लिया है, स्नेह राणा है जिन्होंने 1 विकेट लिया है। और अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं, अब विंबलडन ले चलते हैं आपको टेनिस के मैदान में।
1: टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2026 को उसके दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। इस बार खिताबी मुकाबला होगा दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच। सबसे बड़ी खबर रही 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच का सेमीफाइनल में बाहर हो जाना। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना अधूरा रह गया। उनसे 15 साल

0: खोटे यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें सीधे सेटों में 6-4, 6-4 और 6-4 से हराया। ये मुकाबला करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चला, लेकिन जोकोविच एक भी सेट अपने नाम नहीं कर सके। इस जीत के साथ सिनर लगातार दूसरे वर्ष विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में मिली हार का भी बदला ले लिया। पूरे टूर्नामेंट में सिनर ने आक्रामक खेल दिखाया और अब तक बहुत कम सेट गंवाए हैं। पिछले साल उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर विंबलडन का खिताब जीता था और इस बार भी वो अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। 29 वर्षीय ज्वेरेव 1995 के बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ज्वेरेव के लिए ये उपलब्धि इसीलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने के बाद अब लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बना ली है। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद संतुलित रहा है और उन्होंने अब तक सिर्फ 2 सेट गंवाए हैं। अब सभी की निगाहें रविवार को होने वाले फाइनल पर होंगी। एक तरफ होंगे मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर, जो लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीतना चाहेंगे, तो दूसरी ओर होंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो पहली बार विंबलडन चैंपियन बनने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। ऐसे में यानिक सिनर ने अपने होने वाले प्रदर्शन और फाइनल को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: The atmosphere has been always amazing since the first day and it means a lot to me that I can play one more final here. It's the most special tournament we have and it means a lot to me and of course playing against Novak, you know, that what he is still showing is true inspiration. What he's still doing is amazing. I tried, you know, to mix up and yeah, so I'm very happy about the performance.
0: Alexander ne bhi apne final khele jane wale match ko lekar kuch yun kaha.
2: It's amazing. This Grand Slam has always been the one that I struggle with the most and I'm in the final of Wimbledon, so I'm incredibly happy, proud as well, I think, of the team, of everybody who was involved. But we got one more match to go on Sunday and that's what the focus is on. I have to trust myself and I have to believe that I can win and that's what I'm going to do.
0: यानी विंबलडन 2026 का पुरुष एकल फाइनल सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के दो सितारों के बीच टेनिस की बादशाहत की जंग भी होगा। अब अगर आज विंबलडन 2026 के विमेन सिंगल की बात करें तो आज महिलाओं में एक नया चैंपियन बनने जा रहा है। सेंटर कोर्ट पर भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे होने वाले फाइनल में एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की दो खिलाड़ी आमने सामने होंगी। मुकाबला होगा कैरोलिना मकोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच। 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मकोवा ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को बेहद रोमांचक मुकाबले में 6-2, 1-6, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये मैच खास इसलिए भी रहा क्योंकि मकोवा ने एक मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार वापसी की। ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है और विंबलडन में पहला। वहीं 9वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को सीधे सेटों में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया। पूरे टूर्नामेंट में नोस्कोवा ने आक्रामक खेल और दमदार सर्विस के दम पर शानदार प्रदर्शन किया है। अगर दोनों खिलाड़ियों के आपसी रिकॉर्ड की बात करें तो कैरोलिना मकोवा को हल्की बढ़त हासिल है। दोनों की पिछली भिड़त यूएस ओपन में हुई थी जिसमें मकोवा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ग्रैंड स्लैम में फाइनल का दबाव बिल्कुल अलग होता है और नोस्कोवा अपने पहले बड़े खिताब के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में टेनिस प्रेमियों को एक रोमांचक और यादगार फाइनल की उम्मीद रहेगी, जहां चेक गणराज्य की खिलाड़ी पहली बार विंबलडन 2026 की महिला एकल चैंपियन होगी। अपने फाइनल में खेले जाने वाले मैच को लेकर कैरोलिना मकोवा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
3: Honestly, I'm not really thinking about it yet. Tomorrow, I guess we'll go through preparation and maybe just talk with my coach and going into that, how to approach the match on Saturday and then focus on that. But for now, I'm honestly just happy. I'm just trying to enjoy that.
0: लिंडा नोस्कोवा ने भी फाइनल को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुने।
4: It's not going to be easy, you know, playing against a friend. It's never easy. I have played against my good friends a couple of times and it's a horrible feeling. But this is a Grand Slam final, so I don't think that either of us will hold back.
0: अब आपको ले चलते हैं स्पेन के मैड्रिड में, जहां आज

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: महेंद्र सिंह बोल रहे, विकासपुरी गांव बरहाने जिला बलिंग शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: प्रियंका चौधरी का सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और मेरे साथी आरती भारती स्वाति मिसेज कविता देवी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: इसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रियंका चौधरी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: साथ में बनवारी लाल यादव जी गामड़ी से, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा जी महेंद्रगढ़ से, राहुल सैनी इसार से। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार सर, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जी मैं करमवीर सिंह।

0: और बोल रहा हूँ मुरादनगर गाजियाबाद से।
1: करमबीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: जी प्रियंका चौधरी को सुनवा देना। और क्या नाम, दो नाम लूंगा सर जी।
1: हाँ,
0: मेरी बेटी है रोनिका ढिलोड और मेरा भाई है सूरजमल ढिलोड जी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर प्रियंका चौधरी से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ जी, रजपुरा ममाना रोड मेरठ से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ब्रह्मपाल नागर को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
1: हाँ परमाल है, दोस्त है मोहित सिंह भाई है, मेरा लड़का किशन पाल है, पीयूष है। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ, गांव रामसावाड़ा जिला सहारनपुर से जी।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रह्मपाल नागर को सुना दिया जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: चार बच्चों के नाम लूंगा सर।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: वरदान, उन्नति, उत्सव, वंश और हमारे बड़े भाई है रंडेड़ी से बसेसर बटार। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ब्रह्मपाल को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और कुछ नाम है जी? देवचंद है, राकेश, मुकेश, बलेश और कुछ पोती पोता, नितीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन और भांजा, गोविंद, मनोज, हरिचंद और रिश्तेदार मनी, संजीव, ज्योति, गीता, गांव की पूरे की फरमाए।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, सेवा को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ब्रह्मपाल नागर को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जगदीश सिंधारिया बोल रहा जी, डाणा निरसान से, जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ब्रह्मपाल नागर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के भी नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: राजवीर सिंधारिया, सतीश सिंधारिया, ऋतिक सिंधारिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहा है सर, दमोह मध्य प्रदेश से।
0: लक्ष्मण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: ब्रह्मपाल जी हैं, उनके लिए सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर से ये देशभक्ति गीत।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए

0: 3332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से

0: अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं, उनकी जो खेती में लागत है वो कम हो और पैदावार ज्यादा हो, उनको मुनाफा ज्यादा हो। और ये तभी संभव होगा जब हमारे किसान बहन भाई अपनी

0: खेती में आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे। आजकल तो बहुत सारे कृषि यंत्र आ चुके हैं, तकनीकियां आ चुकी हैं, जिनका उपयोग हमारे बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो तकनीकी की बात करें तो आज हम बात करेंगे कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और किस तरह से वो अपनी खेती में लागत कम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सोलर उपकरण हैं। तो किसान बहन भाइयों, आपको बता दें कि आपकी खेती को आसान बनाने के लिए आजकल सोलर वाटर पंप है, सोलर ड्रायर है, सोलर फेसिंग है और देखिए सोलर फ्रिज भी है। बहुत सारे सोलर यंत्र हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती को आसान बना सकते हैं और खेती में बहुत लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, और सबसे पहले बात करें सोलर पंप की, तो ये सूर्य की रोशनी से चलता है। इससे हमारे किसान भाई आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और साथ ही साथ डीजल और बिजली का खर्च भी बचा सकते हैं। इससे दिन में धूप के समय आसानी से सिंचाई होती रहती है। और अब बात करें सोलर ड्रायर की, तो ये अनाज फल और सब्जियों से नमी सुखाते हैं। इससे जो कृषि उत्पाद हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले शीत ग्रहों में फसलें सड़ती नहीं हैं। और इसके बाद बात आती है सोलर ग्रीन हाउस की, तो ये सर्दियों में पौधों को उचित मात्रा में तापमान देते हैं और सोलर फेसिंग खेतों की सुरक्षा के लिए काम करता है।
0: बिल्कुल, इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले कीटनाशक छिड़काव यंत्र का भी इस्तेमाल हमारे किसान बहन भाई आसानी से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल भी हुए हैं। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी किसान भाइयों की मदद कर रही है।
0: बिल्कुल, जिसके लिए भारत सरकार कुसुम सोलर योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य कि हमारे किसान बहन भाइयों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाया जाए और साथ ही इस योजना के अंतर्गत आप किसान भाइयों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो आपकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत आप किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। और इस योजना के तहत डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जा रहा है। देश के जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा।
0: बिल्कुल, तो और क्या क्या उपयोग सौर ऊर्जा के कृषि में हो सकते हैं, तो इसी क्रम में अपने बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी जिसका विषय है कृषि में सौर ऊर्जा का महत्व। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर YP सिंह और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और विशेष तौर पर जब हम खेती की बात करें तो उसमें अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो आपकी लागत में भी बचत आएगी और दूसरी बात यह है कि जो आपकी सौर ऊर्जा है अपार है, जो खत्म होने वाली नहीं है, तो उसका भी आप सही से उपयोग कर पाएंगे। और इसका किस तरीके से उपयोग करें इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं डॉक्टर YP सिंह जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे जो सौर ऊर्जा है उसमें कृषि में क्या महत्व है और आज के परिवेश में अगर हम उसे देखें तो इसकी क्यों आवश्यकता बढ़ती जा रही है?
3: किसान भाइयों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है, चाहे हमारा खेती हो चाहे अदर जितने भी इंडस्ट्री, हर जगह ऊर्जा प्रमुख रूप से हमारे विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अभी देखें तेल जो डीजल गैस आदि की जो हमारे यहाँ समस्या पेट्रोल की हो रही है, ये ऊर्जा बाहर से ही हमारी आ रही है। अगर किसान भाई थोड़ा सा यहीं पे हम, अब भारत सरकार भी कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा PM कुसुम योजना जो 8 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। पीएम कुसुम का अर्थ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं

0: उत्थान महाभियान
1: जी
0: पीएम कुसुम नाम से शुरू किया गया था। ये जो आज परिस्थिति बन रही है, हमारी सरकार द्वारा बहुत पहले से ही इस पर सोचा गया, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे किसान भाइयों को ऊर्जा जो है, जो कि हमारे पास अपार ऊर्जा है
1: जी,
0: लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाएं, किस रूप में करें, उस पर ध्यान देते हुए पीएम कुसुम योजना लॉन्च की गई, जिसमें सरकार अपनी तरफ से उसमें 30 केंद्र सरकार, 30 राज्य सरकार और 40 किसानों के इस तरह करके 60% सब्सिडी हो गई और 40% किसानों को देने के बनाया गया।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उसका किसान कृषि के किन किन कामों में उपयोग ले सकते?
0: आज किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, जरूरत होती है जल की, जरूरत है
1: जी।
0: और उसके लिए हम क्या करते हैं, नहर पे, ट्यूबवेल पे आज जगह आश्रित होते हैं। ट्यूबवेल पे गए तो या तो हमारे पास इंजन है तो उसके लिए डीजल, पेट्रोल या जो भी अदर गैस आदि से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे कास्ट बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने किया कि सौर पंप के लिए उसमें है कि एक पैनल जो होता है 0.25 HP का होता है, तो हम अगर 3 हॉर्स पावर का ले रहे हैं तो उसमें 12 पैनल लगेंगे। इस तरह सरकार का वो था कि 30-30-40-60% सरकार की सब्सिडी थी और 40% किसानों को देना है। तो उसमें सोलर पंप के द्वारा दो चीजें होती हैं सोलर पंप में, एक तो जैसे नहर पे से पानी जा रहा है तो खेत में पहुंचाने के लिए उसको पंप करना है, किसान को कहीं कोई जरूरत नहीं होती, वो सीधे ले जाकर सोलर पैनल लगाता है और डायरेक्ट जो है उसमें दो चीजें होती हैं कि एक है कि बैटरी के द्वारा बिजली को इन्वर्टर के रूप में इकट्ठा करके उसको चालू करते हैं, दूसरा है कि सोलर के द्वारा डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट होती है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पैदा होती है और मोटर कनेक्ट होती है, DC रूप में सीधे जो है पंप पानी चल जाता है और पंप सीधे किसानों को खेत पे जाता है। इसमें किसानों को बैटरी का कास्ट भी नहीं होता और सीधे वो किसान उसका फायदा लेते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपकी आज बिजली है नहीं है, किसी कारण आंधी बारिश आ गई, कोई समस्या आ गई, उस समय भी हमारा सोलर जो है काम करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में साल में लगभग 300 दिन सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ सोलर की समस्या हमारे रूप में कभी नहीं होगी।
1: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह से अगर हम देखें सोलर पंप हमारे डीजल या बिजली पंप से बेहतर है। तो डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे देश की जोत छोटी है और बहुत किसान सीमांत हैं, तो क्या इनके लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है?
0: सबसे ज्यादा सीमांत छोटे किसानों के लिए ही सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, क्योंकि यह छोटे किसान के लिए सबसे उपयुक्त इनको, क्योंकि कनेक्शन और वो सब कास्ट के लिए उनकी बचत हो जाती है। और ये जो है एक ही रूप में नहीं है, किसान केवल सोलर पंप के लिए, सोलर जो है तो सोलर ड्रायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सोलर ड्रायर में होता है कि चाहे अनाज है या सब्जियां हैं, उसको जो हम खुले धूप में जैसे अनाज को सुखाते हैं, उसमें दो तीन चीजें हमारी समस्या आती है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है धूल मिट्टी डस्ट आ जाती है, और तीसरी समस्या जो आती है उसे फंगस बैक्टीरिया फफूंद आदि का इन्फेक्शन होता है। सोलर ड्रायर में ये समस्या एकदम नहीं आएगी। और रही सब्जियों का, जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको हम ड्राई करके बाद में हम उसको सूखा करके बेचते हैं, जैसे हमारी मेथी होती है या टमाटर का, उसको हम प्यूरी करके बाद में हम उसको टमाटर का पाउडर फार्म में भी टमाटर अब आने लगा है। ये सारी चीजें जो हैं हम उसको तैयार करके सोलर ड्रायर के द्वारा उससे हम अपने किसान भाई अपना ये काम कर सकते हैं। दूसरा है सोलर काम है कोल्ड स्टोरेज, जो सनफ्रिज के रूप में हमारे यहाँ पूसा संस्थान में एक सनफ्रिज भी बनाया गया है, या किसान अपने खेत पर एक छोटा सोलर फ्रिज के रूप में अपना बना सकता है, जैसे कोई लीफी वेजिटेबल है या अदर जो भी वेजिटेबल है उसके लंबे समय तक रखने के लिए, जिससे मंडी में रेट कम है या रेट जब ज्यादा आए उस कंडीशन में, या आपका प्रोडक्शन अचानक ज्यादा हो गया मार्केट में इकट्ठा ना जाए, रेट अच्छा मिले, उस कंडीशन में भी आप अपने सोलर फ्रिज में उसको रखकर आप उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ में एक और इस किसानों के लिए उपयोग का है ग्रीन हाउस
1: जी,
0: उसका तापमान भी जो है नियंत्रण करने के, उसमें भी सोलर पैनल क्या करते हैं हम उसके ग्रीन हाउस के छत पे लगा के जो हमें बिजली की ग्रीन हाउस में बाहर से फैन वगैरह के लेते हैं, क्योंकि 0.25 HP का एक पैनल होता है, हमें वहां अगर मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रीन हाउस है तो उसमें 2 HP का हमें लगेगा, तो मीनिंग हमें 8 पैनल से ही हमारा जो है काम हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया

0: इसका सोलर पंप है, आपका सोलर ड्रायर है और आपका सोलर फ्रिज के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा लगवाएं और जो आपने कुसुम योजना का जिक्र किया उसका लाभ लें। तो किसान भाई किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं?
1: वो किसान भाई इसमें कुछ नहीं करना है, हर जिले में डीडी एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो होते हैं
0: जी
1: वहां उनको सारी योजना के बारे में बताई जाएगी। या तो चाहे तो एक वेबसाइट है PM कुसुम.MNRE.GOV.IN पर जाकर आप अपना पूरा लॉगिन करें, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, किसानों का अपना आधार नंबर, किसान का नाम, जोत जो फरद कहते हैं या खतौनी कहते हैं वो डाल के आप डिटेल, आपको क्या चाहिए, कितना सीमांत किसान है या बड़े किसान है, उस हिसाब से आप सबमिट कर दीजिए, आपको सारी सब्सिडी या सारा रूल आपको आ जाएगा।
0: यानी शुरुआत में आप जब आप लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ लागत आपको अपनी पास से भी
1: हाँ,
0: लगानी पड़ती है।
1: 40% लागत किसानों को अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, 60% सरकार की तरफ से है, लेकिन कुछ कंडीशन में 60 से ज्यादा भी % जो है वहाँ जिला कृषि अधिकारी के यहाँ जाएं, आप बात करें, आपको मिल सकती है।
0: तो डॉक्टर साहब जब कोई भी उत्पादन या कृषि में सौर ऊर्जा का हमारे अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो क्या उनकी आय में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है?
1: जब उनका कास्ट ही कम हो जाएगा तो आय अपने आप बढ़ जाती है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहे कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दुगुना करना, तो उस कंडीशन में अपने आप है कि हमें सबसे बड़ी उसमें उत्पादन लागत को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। जब हम लागत कम कर देंगे और किसानों को सही समय पे, वो क्योंकि बिजली पे निर्भर नहीं रहेंगे, बिजली या हमारे डीजल पेट्रोल आदि पे, तो सही समय पे अपने किसान अपने खेत को अनाज को पानी खेतों को दे सकता है, तो अपने आप वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कास्ट कम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो उनकी इनकम ऑलरेडी अपने आप बढ़ेगी और सब्जियों में आदि का वो स्टोरेज कर लेंगे, अच्छे टाइम पे अच्छे समय पे बाजार में ले जाएंगे, तो इससे उनको उसका उचित मूल्य भी मिलेगा।
0: जिस तरीके से आजकल देखते हैं कि प्रदूषण की भी समस्या है, डीजल इंजन इस तरीके से चलाते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण में भी जो हमारा पर्यावरण संरक्षण की भी बात हो सकती है।
1: इसमें 3-4 चीजें किसानों को सबसे अच्छा वो है, उनकी लागत में कमी होगी, पर्यावरण जो है अच्छा रहेगा क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलेगा, और जो बिजली कटौती आदि समय पे हो जाती है जिस समय किसानों की जरूरत होती है, किसी कारण से आंधी आ गई कुछ, क्योंकि गांव एरिया में, अर्बन एरिया में तो नहीं, गांव एरिया में आज भी अगर आंधी या किसी कारण से आ जाती है तो लंबे समय तक, 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर गैप हो जाता है तो किसानों को उस समय पानी की जरूरत है, तो पानी न मिलने के कारण उनका उत्पादन घट जाता है, इसलिए फसल खराब होती है। और सौर ऊर्जा जो है हमारी सूर्य का, ये कभी इसकी कमी नहीं है हमारे भारत देश में, विशेष रूप से भारत के परफे जो हमारे देश का क्लाइमेट है, यहाँ 300 दिन तक सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध रहती है। और साथ में सबसे बड़ी है कि अगर किसान थोड़ा सा बड़ा पैनल लगाते हैं तो उनकी जितनी बिजली की खपत अगर उस समय उनको जरूरत है उस समय अपने खेत पे यूज करें, नहीं कर पा रहे हैं तो वह ग्रिड से कनेक्ट होता है, ग्रिड वापस चला जाता है, जब किसान को बाद में जरूरत होती है ग्रिड उतने का उनको जो है बिजली दे देती है।
0: थोड़ा सब क्योंकि सौर ऊर्जा के लाभ ही लाभ हैं, तो फिर भी हमारे किसान भाइयों को कुछ न कुछ चुनौतियां रहती हैं इसको अपनाने में।
1: अभी इसके लिए थोड़ी चुनौती है कि इसको मेन जो समस्या आ रही थी कि इसकी जानकारी की अभाव था, इसके लिए हर जगह प्रशिक्षण के द्वारा, सरकार की योजना के द्वारा बताया जा रहा है, गोष्ठी सेमिनार आदि करके, उसमें थोड़ा सा किसान भाई भी बाद में थोड़ी उनको असुविधा होने लगी जो लगाए कि उससे प्रसार में की बिजली कम पैदा हो रही थी, तो उसमें समस्या ये नहीं आई थी, समस्या ये आ रही थी कि पैनल के ऊपर डस्ट और आदि जम जाते थे जिसके कारण सौर ऊर्जा जो है वो कम आ पा रही थी। बाद में किसानों को ये इसीलिए कहा जा रहा है कि आसपास अगर कृषि विज्ञान केंद्र है वहां या कोई इंस्टीट्यूट है वहां पर जाके उनसे 2 दिन की 3 दिन की एक प्रशिक्षण ले लें, उसको कैसे क्लीनिंग करें। हर किसान अगर जो पैनल लगा रहे हैं महीने में एक बार उसकी जो है पानी से या वाइपर के द्वारा उसकी सफाई कर दें तो उनकी बिजली की उत्पादन है वो अच्छा बना रहेगा और किसानों को भरपूर उससे लाभ मिलेगा। साथ में किसान एक चीज और वो करें कि उससे केवल वही नहीं है, किसान अपने घर की भी बिजली जो है सौर ऊर्जा के द्वारा वो उसको इन्वर्टर फार्म में, क्योंकि रात में जरूरत होगी तो वो उसको इन्वर्टर फार्म में कर सकता है, लेकिन खेत पे अगर उसको दिन में है तो वहां इन्वर्टर फार्म न करके डायरेक्ट डीसी के द्वारा पैनल से मोटर को कनेक्ट करेगा, वो कर सकता है। और एक और वो है एग्री वोल्टाइक्स, उसमें होता है कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक

0: वहां जाके देख सकते हैं, ऊपर सौर ऊर्जा है, नीचे जो है उसकी खेती भी उसके छाया में हम कर रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर सही देखभाल हमारे किसान भाई सोलर पैनल के करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें ज्यादा ऊर्जा बराबर लगातार मिलने की संभावना रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे सौर ऊर्जा है उसके अगर भविष्य देखा जाए तो क्या संभावना है?
0: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए भविष्य हमारा सौर ऊर्जा या सोलर पावर पर ही चलेगा और इसको टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है और अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि हमें देश को भी और हमारे किसानों को भी सबसे ज्यादा ऊर्जा पर ही आत्मनिर्भर होना होगा। जब तक हम ऊर्जा पे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमें किसी पे डिपेंड रहना होगा। अगर हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हमारे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ेगा।
1: तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा के पैनल लगवाएं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने यहाँ जो आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां से जानकारी प्राप्त करें, जिला कृषि अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ से जाकर वो पहले जानकारी प्राप्त करें, फिर पीएम किसान जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करके सौर ऊर्जा का घर के लिए भी, और अगर छोटे किसान हैं या बड़े किसान जिस तरह के भी आपको जरूरत है वहां पे, आप सौर ऊर्जा की तरफ, सोलर पावर की तरफ आप जाइए, आपको लाभ ही लाभ है उसमें, कहीं से कभी भी कोई नुकसान नहीं किसी किसानों को हो पाएगा। किसान भाइयों को हमेशा लाभ मिलेगा, चाहे वातावरण के द्वारा, चाहे हमारे लागत में कमी होगी या हमें समय की भी हमारी बचत होगी।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर वाईपी सिंह जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी कृषि में करके अपनी लागत में कमी ला सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि में सौर ऊर्जा का महत्व, किसान भाइयों आप सुन रहे थे ये बातचीत, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वाई पी सिंह और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब किसान बहन भाइयों आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं खजान सिंह।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे खजान सिंह।
1: और अब किसान बहन भाइयों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपको बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल के ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पर भी। साथ ही अटल पेंशन योजना की जानकारी भी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह पर चर्चा सुन सकेंगे और साथ ही आपको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 12 सेकंड हुए हैं। हाजिर हैं हम लेकर कुछ चुनिंदा गजलें खास आपके लिए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं निदा फाजली साहब की कलम से निकली और आशा भोसले और जगजीत सिंह साहब की पुरसुकून आवाज में इस गजल के साथ।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरी मर।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मासूम के लिए भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गजल।

और श्रोताओं, बढ़ते हैं आज की आखिरी पेशकश की ओर। सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये गजल। गौर फरमाइएगा।

इसी के साथ गजल के इस कार्यक्रम से मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के उपायों पर उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालयों को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गढ़ तक पहल शुरू की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के माध्यम से राजधानी के इतिहास को शोध आधारित और प्रमाणिक रूप में नई पीढ़ी और दुनिया भर के

0: शोधकर्ताओं तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य अभिलेखों पर उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना, अभिलेख प्रबंधन को मजबूत बनाना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच को और आसान बनाना है। वहीं पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य दिल्ली के समृद्ध स्थलों और स्मारकों का अध्ययन, संरक्षण और संवर्धन करना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए कुल 12 फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें प्रतिमाह 25 से 50,000 रुपए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजधानी में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, नए इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि बैठक में उद्योगों से संबंधित नीतिगत सुधार और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने यमुना डायलॉग्स पहल के अंतर्गत पहली स्टेक होल्डर परामर्श कार्यशाला आयोजित की। ये पहल दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू द्वारा यमुना के बाढ़ मैदानों के प्रारंभिक दौरों और उसके बाद डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद शुरू की गई। कल आयोजित इस कार्यशाला में डीडीए के उपाध्यक्ष ने चर्चा का नेतृत्व किया। बैठक में यमुना के बाढ़ मैदानों के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार करने और पर्यावरण अनुकूल घाटों के निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। डीडीए ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से दिल्ली यमुना कॉम्पैक्ट की नींव रखी गई, जो यमुना कॉरिडोर के पुनरुद्धार, संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझा रोडमैप के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने सड़कों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था, नालों की सफाई तथा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री सिंह ने जनता दरबार में क्षेत्र से आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के राजा विहार में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने और समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी के उद्यान मार्ग पर स्थित इस दो मंजिले पुस्तकालय में 35,000 से अधिक पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और संदर्भ प्रकाशनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। शोधार्थियों और अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्ययन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट

0: 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लिए यह पुस्तकालय एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने दिल्ली के सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में लाने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया।
2: सार्वजनिक पुस्तकालय सब युवाओं के लिए एसेट का काम करेगी। वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक जो माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का, इस लाइब्रेरी के माध्यम से मिल पाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के लिए दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राजधानी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तर रेलवे ने परिचालन दक्षता, राजस्व अर्जन, टिकट जांच तथा यात्री सेवाओं के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन्स ऑन डिमांड योजना के अंतर्गत 1,887 विशेष रेलगाड़ियों का सफल संचालन किया गया, जिससे लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित हुआ। वहीं प्रतीक्षा सूची की नियमित निगरानी करते हुए विभिन्न रेलगाड़ियों में 4,120 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे 28 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर टिकट जांच से अर्जित राजस्व के आधार पर जोनल रैंकिंग में उत्तर रेलवे ने इस वर्ष अप्रैल और मई में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जून में पूरे भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान सहयात्रियों से संवाद किया और उनकी दैनिक यात्रा, नागरिक सुविधाओं तथा राजधानी के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रियों के साथ बातचीत से उन्हें उनकी अपेक्षाओं और दैनिक अनुभवों को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावी और जन केंद्रित शासन के लिए नागरिकों की बात सुनना और उनकी जरूरतों से जुड़े रहना आवश्यक है। श्री संधू ने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों को समझने से शासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने ब्लू लाइन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन रीमॉडलिंग, नए एस्केलेटरों की स्थापना, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटों के पुनर्व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने से जुड़े अन्य कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास और उन्नयन कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन और यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू की गई ये योजना आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।
4: वो एक ऐसा दौर था जहां पे देश भर में ही नहीं दुनिया में एक महामारी की परिस्थिति उत्पन्न थी। कोविड के दौर से हम लोग उस वक्त गुजर रहे थे और उस वक्त ये सोच और उस वक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले समय में भारत भारतीयों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यकीनन वो एक ऐसा

0: दौर था जहां सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चुनौतियां चल रही थी, जहां हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा था कि कल को भविष्य में अगर दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पे बाधाएं आती हैं, ऐसे में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली में जन से गण तक नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराना है। एक रिपोर्ट।
2: जन से गण तक एक अनुभवात्मक संग्रहालय आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को भारत की संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक मूल्यों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संग्रहालय की संविधान दीर्घाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता और जनभागीदारी जैसे विषयों पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले सत्र में दिल्ली के 5 स्कूलों के 21 छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सहभागी विद्यालयों द्वारा नामित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने बताया है कि जो विद्यालय अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए नामित करना चाहते हैं या भविष्य के सत्रों में शामिल होना चाहते हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि निरंतर जन भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के कारण रोहिणी आज दिल्ली के सबसे हरित क्षेत्रों में से एक बन चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से स्वस्थ, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गण तक पहल शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: या इसकी बुनियादी वजह यह रही कि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। इस दिन का बुनियादी पैगाम यह है कि अगर लोग कम होंगे तो सबको अच्छी खुराक और तालीम मिल सकेगी। तो इसका आप भी ख्याल रखें और लीजिए समाप्त कीजिए ये मुशायरा।
1: मौजूद सामीन, आज के इस बावकार मुशायरे में जो शोरा इकराम शरीक हो रहे हैं उसमें जनाब जावेद नियाजी, जनाब इमरान अजीम, जनाब हबीब सैफी साहब और मैं नाचीज एम आर कासमी। तो हम शुरू करते हैं आज का ये मुशायरा। मैं सबसे पहले जनाब जावेद नियाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें।
2: बहुत शुक्रिया सर। इशारा का मतलब पेश करता हूँ डॉक्टर साहब
1: जी।

0: इश्क करना अगर नहीं आता।
1: बहुत अच्छे,
0: इश्क करना अगर
2: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया तुमको।

0: शेर पेश करता हूँ हाजिन इकराम,
1: इशारे अली।
0: तेरा चेहरा उदास था वरना।
2: क्या मिस्रा है, बहुत अच्छा।

0: हुनर नहीं आता,
1: नहीं आता इश्क करना, अगर नहीं आता। ये भी बतौर खास पेश करता हूँ शेर
0: जी।
2: जी अता कीजिए।
1: रोशनी के बिना किसी का भी,
0: रोशनी के बिना किसी का भी,
1: रोश

0: जब तलक उस कदर नहीं
1: आता
0: चलते रहना है बस
2: अकीदत
0: से जब तलक उस
3: कदर
0: नहीं आता।
2: बहुत शुक्रिया
0: दोस्तों को।

0: बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बड़ी मुनफरिद गजल। और इस गजल की खास बात ये थी कि कहीं रदीफ इस्तफामिया थी और कहीं इंकारिया थी और कहीं इस बात का सबूत भी दे रही थी। एक ही कैफियत की बड़ी अच्छी गजल आपकी माशाल्लाह। बड़े होनहार नौजवान शायर को हम सुन रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ एक ऐसे हमारे अलीगढ़ के साथी और बहुत कामयाब वकील और कई किताबों के खालिक, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायरी इनको वरासत में मिली, इल्म और अदब का माहौल, माशाल्लाह इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे तख्लीककार शायर और राइटर थे, इनकी खुद अहलिया बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं और ये ख़ुद बहुत अच्छे शायर भी हैं, और इनकी जो अदबी और तनकीदी तजिया निगारी है उस पर मबनी जो इनकी किताबें हैं देख कर बड़ी हैरानी होती है। मेरी मुराद है जनाब इमरान अजीम साहब से।
2: गजल का मतलब अर्ज कर रहा हूँ
1: जी।
2: अपने ही दम पे

0: उसे नहीं उसे कोई झूठ का कारोबार है दुनिया, झूठ का कारोबार है दुनिया, और एक झटके में जिभ करती है।
1: एक झटके में जिभ करती है,
0: एक झटके में जिभ करती है, किस कदर धारदार है दुनिया, किस कदर धारदार है दुनिया। एक दिन उसको सौंपना होगी,
2: एक दिन उसको सौंपना होगी,
0: एक दिन उसको सौंपना होगी, हम पे जिसकी उधार है दुनिया, हम पे जिसकी उधार है दुनिया। कासमी कहना है दानाओं का, कासमी कहना है दानाओं का, एक दुनिया के पार है दुनिया, एक दुनिया के पार है दुनिया। फिर देखिए कि न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए,
1: न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए,
0: न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए, ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। और शेर समाज फरमाए के भड़क गया तो ये मुमकिन है घर जला डाले,
1: भड़क गया
0: तो ये मुमकिन है घर जला डाले, किसी की याद का शोला न घर में रखा जाए,
1: किसी की याद का शोला
0: न घर में रखा जाए, भड़क गया तो ये मुमकिन है घर जला डाले, किसी की याद का शोला न घर में रखा जाए।
2: क्या कहने
0: ये शेर बतौर खास
2: जी आता
0: के बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए,
2: बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए,
0: बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए, मैं चाहता हूँ कदम फिर भंवर में रखा जाए।
2: वाह वाह वाह,
0: मैं चाहता हूँ कदम फिर भंवर में रखा जाए, और न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए, ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा। इस बज्म में जिन शोरा ने शिरकत की थी उनमें जावेद नियाजी, इमरान अजीम, हबीब सैफी और निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे एमआर कासमी। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, अपनी मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:30 और ये वक्त है फिल्म संगीत का, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

और जी मौसम है बड़ा मज़ेदार और उस पे है ये वीकेंड का वार भी। और इस वक्त मौसम जो है ना बहुत मज़ेदार हो रहा है, बारिश है, हवा है और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू है और उसके साथ मज़ेदार फ्राइड कुछ आइटम भी हैं। और शाम का ये वक्त है, कुछ लोग खाना खा चुके होंगे और कुछ लोग इस इंतज़ार में होंगे कि पकौड़ों की एक गर्मा गर्म प्लेट आती होगी।

जी छमछम अगर वीकडेज में हो तो जरा सी बुरी लगती है, और वाकई में उस वक्त ज्यादा बुरी लगती है जब आपको कहीं बहुत ज्यादा जरूरी निकलना हो और एकदम छमछम झमझम हो जाए। और लेकिन लेकिन लेकिन जो सप्ताह का आखिरी ये 2 दिन होते हैं ना, सैटरडे और संडे, उसमें बहुत सारे लोग घर पर होते हैं, तो जो बारिश का असली मजा है ना वो तभी है, और तब भी है कि जब आप अपनी उस जगह पर पहुंच जाएं जहां आपको सूखे सूखे पहुंचना है। और अब ये इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने फिल्म संगीत का आनंद लिया। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

0: 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और ठीक 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ठीक 11 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। आइए पहले सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौते

0: पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान

0: करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित

0: पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janaki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future

है जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी राब्ते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गयाजी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाज़ाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगमील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगमील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं। वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुबतला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ जबानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी जबान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था। उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी, और हाँ ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए, और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ ही नहीं सकती मैडम, बस आप इसे खरीदी लो।
1: Kelvinator, the coolest one.
2: जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सीटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सीटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सीटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सीटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: The coolest one.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए, आपके पास आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 पर आपके लिए लेकर आए हैं सुरों के उन सितारों को अपने साथ, जो आज भले इस दुनिया में ना हो लेकिन रहती दुनिया तक वो हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे।

दोस्तों, पता है आपको, मोहब्बत एक ऐसी शय है, एक ऐसा दरिया है जिसमें इंसान जब डूबता है तो उसकी चाहत ये नहीं होती कि कोई उसे बचा ले। वो तो उस दरिया में और गहरे और गहरे और गहरे डूबते ही चले जाना चाहता है।

दोस्तों, मौसम का असर दिल पर होता तो ज़रूर है और इस असर को खुशनुमा बना देते हैं गाने। आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना जो मौसम के बदलते मिजाज से दिल के तारों को जोड़ देता है बहुत ज़ोर से।

दोस्तों, रात की इस पहर में हमें अक्सर याद आते हैं वो लोग जो दिल के बहुत करीब होते हैं या करीब आ जाते हैं। शायद इसकी वजह ये चुप होती होगी, ये खामोशी होती होगी जो रात की चादर में ओढ़ के ले आती है अपने साथ वो सारी खूबसूरत यादें।

दोस्तों, जिंदगी तो हम सभी के पास है, लेकिन उसे जीने का अंदाज ही तय करता है कि आप कैसे हो। चलिए गीता दत्त जी की आवाज में समझते हैं जिंदगी के इस तौर को।

दोस्तों आप हमारे ना सबसे प्यारे वाले दोस्त हो और हमारे साथ हो रात के इस पहर में भी. तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी कहानी.

मुश्किलें किसे नहीं होती, लेकिन बार बार उनसे निकल आना ही तो ये बताता है कि हमारा हौसला कितना बुलंद है।

जो हुआ सब भूल जाइए, अच्छा या बुरा, कल की सुबह नया सूरज एक नई रोशनी और ताकत के साथ हम सब के लिए एक नई ताजगी लेकर फिर से आएगा, एक नई रोशनी देने के लिए।

दोस्तों, दुनिया में तमाम तरह की मुश्किलें कठिनाइयां भले ही हो, लेकिन हम सबके पास एक नाम, एक सहारा है जो हमेशा हमें फिर से एक नई शुरुआत करने की ऊर्जा देता है। वो नाम है परमात्मा का। तो अगला गाना फिल्म पवन पुत्र हनुमान से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जब से ये दुनिया बनी शायद मोहब्बत की शुरुआत भी तभी से हुई हो और शायद तभी से लोगों को इसके जरिए जिंदगी को और करीब से जानने की वजह मिल गई हो।

दोस्तों सहेली और दोस्त जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जिनसे हम कभी कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ छुपा नहीं सकते, और उनसे कोई भी बात, कोई भी राज उनसे बचा हुआ नहीं होता है हमारा, क्योंकि सहेली और दोस्त अब से नहीं है, वो तब से है जब से ये दुनिया बनी, जब से ये कायनात बनी, है ना।

फट के घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: दोस्तों, गीत सुनहरे में पुराने गानों के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है देखिए ना, पता ही नहीं चलता। और ये गीत इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे हैं कि ताउम्र हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, ऐसा ही तो दिल चाहता है। लेकिन अब वक्त है समाचारों का, क्योंकि ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अभी आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और अब समय है कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप लगातार कुछ ऐसा संगीत जो आपको आपके दिल को और सुकून देता है और खुशी देता है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है. अब से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार. अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं. न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर

0: निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरोइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल जिसकी पहली प्रस्तुति है आपके लिए।

0: इस गजल के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 में है, लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार हैं जी उमा, आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है जी उमा का वायलिन वादन।

कर्नाटक संगीतीय कार्यक्रम आद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वालन वादन कलाकार थी जी उमा और आपके साथ मृदंगम पर संगत किया एम वी चंद्रशेखर ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज रविवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का और 5:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में सुनिए विमल मुखर्जी।

जी का सितार वादन आज आप प्रस्तुत करेंगे राग भटियार। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा सुबह 6:10। 6:40 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरितमानस से पाठ। इसके अंतर्गत आज बाल कांड का भाग 114 सुनवाया जाएगा। संस्कृत में समाचार का समय रहेगा सुबह 6:55। साथ ही सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर संगीतिका प्रसारित की जाएगी। सुनिएगा आज इस कार्यक्रम में भूषण त्रिपाठी के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम सुनाया जाएगा। 8:45 पर सुनिएगा साहित्य की। आज इसमें परिचर्चा का विषय रहेगा हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता। 9:15 पर सुनिएगा हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधा वेंकट रमन कड़ी 2। प्रस्तुत करेंगी काजल सूरी, भेंट करता होंगी नीलम मलकानी। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आज ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी जसपाल।

0: सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा वायलिन वादन। कलाकार होंगी प्रमिता मुखर्जी। आज आप सुनेंगे राग अलहिया बिलावल। बारह प्रदर्शन पर सुनिएगा महिला कार्यक्रम। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंडस्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास।

लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।